0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला

0: नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। उन्होंने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया।
1: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां तथा भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहते हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे अत्याचार और सीमा पार आतंकवाद के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में श्री जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने अफगानिस्तान के साथ कई बैठकें की हैं। अफगानिस्तान के कई मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं जिनसे विकास, सहयोग, व्यापार और संपर्क जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत हुई है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास न मिलने के आरोप गलत और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अधिकांश पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है और कुछ मामलों में केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं शेष हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना उद्योग की अपेक्षाओं और नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के कौशल के बीच की दूरी कम करने में मदद के लिए तैयार की गई है। 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पात्र हैं और उन्हें इंटर्नशिप करने पर प्रतिमाह न्यूनतम 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। दिल्ली की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को आगे की जांच करने की अनुमति दे दी है। ब्यूरो ने इस मामले में 13 आरोपियों के अलावा अन्य साजिशकर्ताओं की जांच जारी रखने की अनुमति की मांग की थी जिनके विरुद्ध पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सकल दिङ्मण्डल यशो वितान धवली कृत जगत्त्रितय वज्रदेह रुद्रावतार लंकापुरी दहन उमा अमल मंत्र उदधि बंधन दश शिरः कृतांतक सीताश्वसन वायुपुत्र अंजनी गर्भ संभूत श्री राम लक्ष्मणा नंदगर कपि सैन्य प्राकार सुग्रीव साह्य रण पर्वतोत्पाटन कुमार ब्रह्मचारीन गभीर नाद सर्व पाप ग्रह वारण सर्व ज्वरोच्चाटन डाकिनी विध्वंसन ओम ह्राम ह्रीम ओम नमो भगवते महावीर वीराय सर्व दुख निवारणाय ग्रह मंडल सर्व भूत मंडल सर्व पिशाच मंडलोच्चाटन भूतज्वर एकाहिक ज्वर द्व्याहिक ज्वर त्र्याहिक ज्वर चातुर्थिक ज्वर संताप ज्वर विषम ज्वर ताप ज्वर माहेश्वर वैष्णव ज्वरान छिंधि छिंधि यक्ष ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाचान उच्चाटय उच्चाटय ओम ह्राम श्रीम ओम नमो भगवते श्री महाहनुमते।

विषमदुष्टानां सर्वविषहरहर आकाशभुवनं भेदय भेदय छेदय छेदय मारय मारय शोषय शोषय मोहय मोहय ज्वालय ज्वालय प्रहारय प्रहारय सकलमायां भेदय भेदय ओम ह्रां ह्रीं ओम नमो भगवते महाहनुमते सर्वग्रहोच्चाटन परबलं क्षोभय क्षोभय सकलबन्धनमोक्षणं कुरु कुरु शिरःशूल गुल्मशूल सर्वशूलान् निर्मूलय निर्मूलय नागपाशानन्दवासुकी तक्षककर

0: कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको लाल किला लिए चलते हैं, जहां से आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रही हैं श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण ले, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो

0: विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
3: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
2: आयुष्मान भारत अब इलाज की चिंता से आजादी।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: आइए लाल किला चलें।
3: वंदे मातरम। स्वतंत्र भारत देश के 79 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भारत भूमि के वीरों और वीरांगनाओं द्वारा किए गए बलिदान का स्मरणोत्सव। श्रोताओं, ये स्वतंत्रता दिवस समारोह जिनके अद्वितीय बलिदान का प्रतिफल है ये दिवस। नमन ऐसे लाखों ज्ञात अज्ञात सेनानियों को, नमन राष्ट्र नायकों और राष्ट्र निर्माताओं को जिनके दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका है और पूरे विश्व में भारत की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। ऐसे राष्ट्र नायकों को भी नमन है आज के इस अवसर पर। गौरव के इन पलों में श्रोताओं, आप सभी को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर से मैं जैनेन्द्र, अपने साथी कमेंटेटर्स नीलम मलकानिया, देवेंद्र त्रिपाठी और आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ आप सभी का इस विशेष प्रसारण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं।
4: वंदे मातरम। लाल किले की इस ऐतिहासिक प्राचीर से आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2026 की सुनहरी सुबह भारत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रही है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि आज पूरे गर्व और उल्लास के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। कोटि कोटि कंठ आज वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय का उद्गार कर रहे हैं। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और उत्साह के रंग में रंगे हुए भारतीय और भारतवंशी देश विदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि मुख्य आयोजन यहां लाल किले पर हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए प्राचीर पर बने ध्वज स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। आकाशवाणी की तकनीकी और कार्यक्रम टीम यहां से आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है। आज तो किले की छटा ही निराली है, जैसे ये स्वयं पर इठलाता हो कि यहीं से हर वर्ष हमारे इस राष्ट्रीय पर्व ने देश दुनिया को एक नई राह दिखलाई है। चहुं ओर भक्ति भाव और उत्साह का भाव परिलक्षित हो रहा है। किले की विशाल और शक्तिशाली दीवारें रंग बिरंगे पुष्पों और पताकाओं से सजाई गई हैं। स्वतंत्रता दिवस की बधाई वाले हैं, बैनर हैं, पोस्टर्स लगे हैं तो सुरुचिपूर्ण पुष्प सज्जा भी की गई है। इस बार के आयोजन की थीम है वंदे मातरम। हमारे इस राष्ट्रीय गीत के 150 गौरवशाली वर्षों को याद करते हुए आज वंदे मातरम की गूंज यहां बार बार सुनाई दे रही है। ज्ञान पथ के सामने किले की विशाल दीवार पर ताजे पुष्पों से वंदे मातरम लिखा गया है। प्रेरणादायी संवर्धन ये है कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गूंजेगा। किले की बाहरी दीवार पर लगे कटआउट्स परमाणु और अंतरिक्ष तकनीक में भारत की प्रगति को दर्शा रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि का वंदन करते हुए, नमन करते हुए, मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर अनेक प्रतीक चिन्ह हैं। हम आपको बताएं कि लाल किले की भव्य प्राचीर पर दोनों ओर दो बड़े बुर्ज हैं, इन्हीं से सटा हुआ हमारा कमेंट्री बूथ है। प्राचीर के ठीक बीच में कुछ ऊंचाई पर ध्वज स्थल है जो हमारे दाहिनी ओर है और इस समय ताजे फूलों से सजा हुआ है। ध्वज दंड को भी फूलों की लड़ियों से सजाया गया है। खुशनुमा मौसम में सुबह की मध्यम बहती मंद

0: प्यार के साथ ताजे फूलों की गंध हमारी उत्सव धर्मिता में शामिल हो रही है। आज वैसे भी तीज है, आप सभी को तीज पर्व की भी शुभकामनाएं। और तीज को माना जाता है बहुत ही शुभ अवसर, क्योंकि त्योहारों की शुरुआत इससे होती है। ऐसे में तीज के अवसर पर जब हमारा राष्ट्रीय पर्व है, तो हमारे राष्ट्रीय पर्व ने अनेक पर्वों की गरिमा साथ ही बढ़ा दी है। ध्वज स्थल के दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है, लाल रंग की कुर्सियां करीने से सजी हुई हैं और उन पर आमंत्रित अतिथि गणों के नाम भी लिखे हैं। दाहिनी ओर की दर्शक दीर्घा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं तथा पद्म पुरस्कार विजेता अन्य अतिथि हैं। और बाईं ओर की जो दर्शक दीर्घा है, उसमें केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति है। हम आपको बताएं कि यहां से हम देख सकते हैं उपस्थिति है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की, श्री पीयूष गोयल हैं, श्री नितिन नवीन यहाँ से हम देख सकते हैं, श्री हरदीप सिंह जी की उपस्थिति है, श्री मनसुख मांडविया जी हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, डॉक्टर जयशंकर उपस्थित हैं, श्री गिरिराज सिंह जी हैं, श्री नितिन गडकरी जी हैं, श्री अश्वनवी वैष्णव जी हैं, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू जी की भी गरिमा में उपस्थिति यहाँ पर है। वर्दी पहने सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति है, तो आकर्षक परिधानों में उल्लासित बच्चे भी हमें दिखाई रहे हैं। यहाँ से
1: माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही देर में यहाँ लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे, और जब वे प्राचीर के ऊपर बने ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे, तो सबसे पहले राष्ट्रगीत, पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब स्वतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्रीय गीत की धुन और स्वर यहां पर गूंजेगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। यहां आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय राजघाट पहुंचकर वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद यहाँ के लिए वो प्रस्थान करेंगे। लाल किले के ये प्राचीर और ये पूरा परिदृश्य अद्भुत है। इस समय ईश्वर की कृपा भी है, क्योंकि मौसम बहुत खुशनुमा है, आसमान घने बादलों से ढका हुआ है, इसलिए धूप की रश्मियां जो है वो धरती तक नहीं पहुंच पा रही है और लोग बहुत ही सुखद वातावरण में यहाँ बैठे हुए हैं। लगभग 27 डिग्री का यहाँ तापमान हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लगभग इतना ही यहाँ पर तापमान है। और पक्षियों के कलरों के साथ हल्की हल्की बयार के साथ जो पताकाएं लगी हैं वो लहरा रही हवा के साथ, हमारे राष्ट्रीय ध्वज जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक लगे हुए हैं, वो भी लहराते हुए एक नई ऊर्जा का संचार हम सबके भीतर कर रहे हैं। वैसे भोर तो हर सुबह हर रोज होती है, लेकिन आज की भोर सामान्य दिनों से बिल्कुल हटकर है, क्योंकि भारतवासियों के लिए बहुत विशेष है। हो भी क्यों ना, आज ही के दिन तो 15 अगस्त को सन 1947 में दुनिया के मानचित्र पर स्वतंत्र देश के रूप में भारत का उदय हुआ था। वही भारत जिसके बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुदस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारत कहते हैं और हम स्वयं को भारतीय कहते हैं। मंच की सज्जा को आपने जाना, अनुभव किया होगा, अपने अपने कल्पना में उसे सजीव भी किया होगा आपने। मंच के ठीक सामने जो ज्ञानपथ का क्षेत्र है, वहां सबसे पहले हमारी दृष्टि जहां जाती है वो है राष्ट्रीय सलामी गारद जो वहां पर उपस्थित है ठीक सामने। इसमें सेना के तीनों अंगों और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां शामिल हैं। प्रत्येक टुकड़ी में 32 सैनिक हैं और एक अधिकारी उसमें शामिल है। राष्ट्रीय सलामी गारद का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर लोकेंद्र सिंह, सेना की अपनी यूनिफॉर्म में, वर्दी में सजे धजे, गर्व से सीना तरा हुआ। सेना की टुकड़ी की कमान मेजर विकास यादव के हाथों में है, जबकि लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं अपने सफेद यूनिफॉर्म में और पीकैप के साथ। वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर उमेश जी, और एडिशनल डीसीपी विकास मीणा दिल्ली की टुकड़ी, दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे ठीक सामने उस राष्ट्रीय सलामी गारद के दाहिनी हिस्से में वहां पर बैंड दल उपस्थित है जो राष्ट्रीय सलामी के समय राष्ट्रीय धुन बजाएगा और उसके पहले राष्ट्रीय गीत यहां पर बजाएगा। लेकिन उनके पीछे भी एक ऊर्जा का अनुभव, अद्भुत दृश्य हम देख पा रहे हैं श्रोताओं, क्योंकि ये इस बार का आयोजन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर रहा है, जिसको हम यहाँ के कण कण में, यहाँ के पूरे वायुमंडल में हम उसको महसूस कर सकते हैं, यहाँ के वातावरण में महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ वंदे मातरम की गूंज यहाँ पर हम सबको उत्कंठा से प्रतीक्षा है, उस क्षण की जब पहली बार यहाँ से उसे बजाया जाएगा और गाया जाएगा, उसके साथ साथ बड़ी संख्या में युवा शक्ति यहाँ पर एक नई ऊर्जा का प्रतिबिंब लेकर उपस्थित है। और इसमें सामने जो दृश्य हम देख पा रहे हैं ज्ञानपथ पर, वहां लगभग 2500 की संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो एनसीसी से संबंधित रखते हैं, एनसीसी के तीनों विंग से संबंधित रखते हैं, और उसके साथ साथ हमारे माय भारत वॉलंटियर स्वयंसेवक भी इसमें शामिल हैं। और इन्होंने जो अधिसंख्य हैं, बहुसंख्यक हैं, उसमें उन्होंने

0: सफेद रंग की वेशभूषा पहन रखी है, ज्यादातर जिनकी संख्या है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा रंग है जो हमारे केसरिया रंग यानी हमारे बलिदान का भी प्रतीक है, और उसी रंग के साथ केसरिया रंगों की वेशभूषा के साथ उन्होंने यहाँ रचा है वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम इस बार इस पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में गूंजेगा
1: जी। उत्तर से लेके दक्षिणी लकीर तक, पूर्वा से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के तीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं, हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। देश की संचयी शक्ति जो देश का इतिहास अपने आप में समेटे है, एक अभिवादन भी है, सम्मान भी है, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पहचान भी है। ये दो शब्द जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में देशवासियों को एकजुट किया और आजाद भारत को भी सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हम आपको बताएं साथियों, वंदे मातरम जो यहां से हम देख रहे हैं, एनसीसी कैडेट्स ने जो मानव संरचना में लिखा है, बेहद प्रेरक बेहद खूबसूरत यहां से जान पड़ रहा है। और साथ ही जो अन्य यहां पर बच्चे हैं वो उत्सुकता से एकटक इन बच्चों को निहार रहे हैं। आज के आयोजन के लिए राजधानी में परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। वैकल्पिक मार्गों के बारे में काफी पहले से ही जानकारी साझा की गई है। कई दिन पहले से ही सभी प्रमुख चौक चौराहों पर, महत्वपूर्ण भवनों पर रंग बिरंगी प्रकाश सज्जा की गई है। साथ ही जन समुदाय की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। राजधानी को गति देने वाली मेट्रो भी हमारे इस राष्ट्रीय पर्व का आज है अपनी सेवा देते हुए आज सुबह 4 बजे से सरपट दौड़ रही है। यहां आयोजन स्थल के आसपास क्लॉक रूम, व्हीलचेयर और पेयजल की व्यवस्था की गई है। लगभग 23,000 आगंतुकों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। अपनी सजीली सैन्य वर्दी पहने अधिकारी हैं, आकर्षक परिधानों में यहां पर सामान्य जन हैं। एनसीसी कैडेट्स हैं, माय भारत स्वयं सेवकों ने जो संरचना बनाई है, हमने आपको बताया कि बेहद यहां पर आकर्षक है। सीढ़ीदार व्यवस्था में इनके दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। एक ओर विद्यालय के छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ बैठे हैं, अन्य आगंतुक हैं, तो दूसरी ओर भी सीढ़ीदार व्यवस्था में कुर्सियां करीने से लगाई गई हैं। हल्के जामुनी रंग की दरी पर, हरे रंग की कुर्सियों पर आगंतुक आज के अवसर के लिए विशेष तौर से हमारे तिरंगे के जो 3 प्रधान रंग है उनके परिधान पहने हुए हैं। आज का ये आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में हमारे युवाओं की उपलब्धियों को भी उजागर कर रहा है। इंटरनेशनल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में मेडल विजेता युवाओं को भी आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेशनल इनोवेशन कार्यक्रम से जुड़े युवा हैं, पीएम इंटर्नशिप योजना के छात्र हैं, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित बेहतरीन स्टार्टअप के तहत चुने गए श्रेष्ठ प्रतिभागी हैं, माई भारत के स्वयंसेवक हैं, दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में हुई परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थी भी इस समय यहां बैठे हैं। इस अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली में रहने वाले 1500 से ज्यादा ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो इस समय अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहां बैठे हैं और लघु भारत का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक खास बात यह है कि हमारी जल शक्ति का सम्मान रखते हुए इस बार जो प्रांगण घेरे हैं, एनक्लोजर्स हैं, इनके नाम प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। भीमताल, चंद्रताल, दूध सागर, रोबिंद्र शोबोर, रुद्र सागर, चिलिका, हाफलोंग नाम रखे गए हैं। हमें यहां दिखाई दे रहा है वो भारत जो समृद्ध है, जो संपन्न है, साथ ही जो संकल्पित है आगे बढ़ने के लिए, और साथ ही विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लिए जिसमें हर उम्र का देशवासी अपनी ओर से योगदान करने के लिए तैयार है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये स्वतंत्रता जिसने पराधीन भारत में जब देशवासियों को पुकारा तो अपनी जान की परवाह न करते हुए देशवासी जुट गए कि भारत माँ को हमें परतंत्रता की बेड़ियों से आजाद करवाना है। और अब यही स्वतंत्रता हमें ये प्रेरणा देती है कि लगातार आगे बढ़ते हुए हम जहां हैं, जो कर सकते हैं, देश प्रेम मन में रखे हुए, संजोए हुए, देश को विकसित करने की ओर लगातार बढ़े, अपना योगदान करें।
0: निश्चित रूप से, और इसीलिए भारत के भविष्य को लेकर जो संकल्पना है, विजन है, विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2047 तक यानी 100 वर्षों के स्वतंत्र भारत की यात्रा को पूरा करते हुए एक विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित

0: स्थापित कर सके, उसका भी यहाँ दृश्य हमें साफ नजर आता है। यहाँ लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री महोदय का आगमन कुछ ही पलों में होने जा रहा है। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और साथ ही रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह वहां पर उपस्थित हैं। साथ ही दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी वहां पर उपस्थित हैं, जो वहां प्रधानमंत्री महोदय की अगवानी करेंगे और वहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी दी जाएगी। और उसके बाद सलामी गारद का वो निरीक्षण करने के बाद लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और आगे का जो कार्यक्रम है वो यहाँ आरंभ होगा। इस रूप में बिगुल वादन के साथ इस बात का संकेत मिल चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वाहनों का काफिला यहाँ प्रवेश कर रहा है। आइए आपको आगे के विवरण के लिए सीधे लिए चलते हैं देवेंद्र के पास, जो लाहौरी गेट पर उपस्थित है।
1: धन्यवाद जैनेन्द्र। मैं देवेंद्र त्रिपाठी आप सभी श्रोताओं का लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण में लाहौरी गेट से स्वागत करता हूं। इस द्वार के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी आपसे साझा करूंगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस की संयुक्त सलामी दी जाएगी। प्रधानमंत्री सम्मान कारक का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक 13वीं बार ध्वज फहराएंगे और देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। आजादी का ये दिन 15 अगस्त भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित, ना जाने कितने रक्तों से रंजित। ये स्वाधीनता का ही उत्सव नहीं, ये अवसर है माँ भारती के वीर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी, उन्हें ये विश्वास दिलाने का कि आपके बलिदानों का ऋण हम माँ भारती की सेवा करके चुकाएंगे। ये वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जिनके त्याग और बलिदान से ये प्रतिफल आज हमें मिला। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला प्रांगण में प्रवेश कर रहा है और यहाँ का पूरा परिदृश्य नई ऊर्जा से ओतप्रोत। माँ भारती का वंदन और वीर बलिदानियों का अभिनंदन करने के इस पावन आयोजन में उत्साह, उल्लास और श्रद्धा का भाव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन लाहौरी गेट के समक्ष सलामी मंच पर हो रहा है, जहां उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। श्रोताओं, सलामी मंच के सामने तीनों सेनाएं और दिल्ली पुलिस तथा नौसेना बैंड वादकों का दस्ता, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सलामी देने के लिए सभी मुस्तैद। दस्तों के पृष्ठभाग में लगा है 3 रंगों में बैनर, जिस पर झलक है विकसित भारत और विविध भारत की। अंतर सेना सम्मान गारद का जिम्मा इस बार थल सेना को दिया गया है, कमान है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों और सलामी मंच के दोनों ओर खड़े हैं कैप्टन विक्की मेहता और प्रथम नेगी। प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला पहुंचा है सलामी मंच के पास और माननीय प्रधानमंत्री अपने वाहन से उतरते हुए लाल रंग का साफा और ब्राउन यानी भूरे रंग की सदरी, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा माननीय प्रधानमंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव का अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव जीओसी दिल्ली एरिया राजेश सेठी से परिचय कराते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सलामी मंच की ओर, जहां उन्हें अंतर सेना पुलिस सम्मान गारद सलामी देगी, कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों में।
2: अंतर सेना पुलिस सम्मान गारद

कमांडर के नेतृत्व में टुकड़ों की सलामी। भारतीय सैन्य बलों के पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन लाल किले की इस प्रांगण में। अब संयुक्त कमांडर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी से सम्मानगर टुकड़ियों का निरीक्षण करने के लिए आग्रहपूर्ण अनुमति लेंगे। सधे हुए कदमों से, हाथों में तलवार लिए और जोश भारतीय सैन्य बलों का जो झलक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी और सलामी मंच से नीचे उतरते हुए मंच के बाईं ओर से बिछा है रेड कारपेट, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री के स्वागत में अपनी लालिमा से इस स्थल को और गौरव प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री के दाईं ओर दो कदम पीछे, हाथों में तलवार और भारतीय सैन्य बलों का शौर्य लिए चल रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं नौसेना बैंड दस्ते के पास। बैंड मास्टर डी सेल्वम के नेतृत्व में नौसेना का ये बैंड आनंद लोके की धुन बजाएगा, जिसे तैयार किया बैंड मास्टर जे रोड्रिक्स ने, और बच्चों की आवाजें आप सुन पा रहे हैं। यहाँ मौजूद उपस्थित बच्चे

0: नौसेना की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर अरुण कलमाड़ी के हाथों में तीनों सेनाएं देशवासियों को विश्वास दिलाती हुई, हम है भारत के प्रहरी, हम है मां भारती के सेवक और रक्षक। और अब प्रधानमंत्री वायुसेना के दस्ते के समक्ष 24 जवानों की टुकड़ी भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व 80वें स्वतंत्रता दिवस पर करती हुई कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार के हाथों में। दिल्ली पुलिस का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी विनीत कुमार कर रहे हैं। सभी ने अपने भावों से माननीय प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया मां भारती के रक्षक सदैव तत्पर। और अब लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह परेड कमांडर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करते हुए। और अब लाहौरी गेट से माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल लाल किले की प्राचीर की ओर, जो 1947 से हर वर्ष केंद्र बना है भारत के स्वाधीनता उत्सव का। प्रधानमंत्री के साथ हैं जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। लाहौरी गेट, लाल किले की प्राचीर और दोनों गुंबद साक्षी हैं भारत के स्वाधीन होने, विकासशील से विकसित बनने के अमृतकाल के। स्वाधीन 79 वर्षों में भारत ने अपने विकास की लंबी यात्रा तय की है। श्रोताओं, 2026 का भारत विश्व पटल पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत के विचार दुनिया के लिए मायने रखते हैं, जो समाधानों के लिए आज भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि भारत की नीतियों के मूल में है वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श और भारत का उत्कर्ष। विकास भी और विरासत भी भारत की विचारधारा, और भारत हमारा प्यारा भारत बढ़ रहा आगे। एक तरफ अपने हृदय में संजो रहा अपने पूर्वजों के बलिदानों को, तो दूसरी ओर माथे पर चंदन की तरह बिठा रहा युवाओं को, जो भविष्य के भारत की गाथा लिखने को तत्पर। एक ओर इंडियन नॉलेज सिस्टम का सम्मान, दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घोष भी। 80वां स्वाधीनता दिवस अवसर है अपने पूर्वजों को प्रणाम करने का, उनके प्रति श्रद्धा वनत होने का, जिन्होंने तन मन और धन से मां भारती की सेवा की। 21वीं सदी का सबल भारत वीर बलिदानियों का ऋणी है, जिनके समर्पण और बलिदान से हमें आज का यह सौभाग्य मिला। और श्रोताओं, मुख्य समारोह स्थल की ओर चलते हैं, लाल किले की प्राचीर पर, जहां 150 वर्ष वंदे मातरम के पूर्ण होने के अवसर पर इस बार पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की धुन आप सुनेंगे। उसके बाद ध्वज फहराया जाएगा और फिर राष्ट्रगान होगा और प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और विवरण के लिए हम लाल किले की प्राचीर कमेंट्री बूथ पर लिए चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर नीलम और जैनेन्द्र के पास।
1: धन्यवाद देवेंद्र। साथियों, कुछ ही देर में ये पावन और ऐतिहासिक क्षण आएगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर ध्वज फहराने के लिए लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल की ओर आएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे, तब भारतीय सेना का बैंड वंदे मातरम की धुन बजाएगा। अपने राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी भारत माँ की अस्मिता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को जब फहराएंगे, तब राष्ट्रगान होगा, साथ ही तिरंगे को सलामी भी दी जाएगी। आर्मी सिग्नल कोर से कैप्टन रितिका खरेटा माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगी ध्वज फहराने में। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और साथ ही भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर आकाश से झंडा वंदन करते हुए पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वज फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए कमान अधिकारी विंग कमांडर ऋषिकांत के साथ को पायलट स्क्वाड्रन लीडर मोहित सिंह राष्ट्रीय ध्वज वहन किए हुए आएंगे। दूसरा हेलीकॉप्टर वंदे मातरम का ध्वज लिए हुए आगे बढ़ेगा और स्क्वाड्रन लीडर पुनीत यादव पुष्प वर्षा करेंगे, इस तरह से अपनी ओर से झंडा वंदन भी करेंगे और साथ ही यहां बैठे उत्साहित देशवासियों पर भी पंखुड़ियां जब गिरेंगी तो वो दृश्य देखने लायक होता है। बच्चे बेहद उत्साहित हो जाते हैं इसे देखते हुए और आप जानते ही हैं कि अब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं। इस तरह से अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को, राष्ट्र को प्रेरणा देने वाले इन गीतों को हम सम्मान देते हैं। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, भगत सिंह की फांसी, मैं बापू की अंगड़ाई हूँ, हूँ जलियांवाला बाग भी मैं, पानीपत का पानी हूँ, ऊधम की पिस्तौल भी मैं, झांसी वाली रानी हूँ, रंग दे बसंती चोला मैं, गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हूँ, चेतक की हुंकार में ही मैं, राणा प्रताप की शान हूँ, मैं छुपा बोस किनारों में, मैं जंग लगी तलवारों में, मैं इनकलाब की बोली हूँ, आजाद की आखिरी गोली हूँ, मैं भारत का हर भाव चंगा हूँ, मैं सबका पूज्य तिरंगा हूँ। इसी तिरंगे के सम्मान में पूरा आयोजन यहाँ का हो रहा है और यहाँ पर जो सलामी गारद है वो भी जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा उस समय राष्ट्रीय सलामी देगी
0: निश्चित रूप से, और सभी को उस पल की प्रतीक्षा है। श्रोताओं, लाल किले के प्राचीर से जब हमारी दृष्टि सामने इस पूरे क्षेत्र की तरफ जाती है, चांदनी चौक की तरफ जाती है, तो अनायास ही बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने अपने आप सजीव होने लगते हैं, जो हमारे पूरे राष्ट्र के लिए, देश के लिए संघर्ष का एक बहुत कठिन दौर रहा है जिससे देश गुजरा है। धर्मांधता और बलपूर्वक धर्मांतरण के वो विभत्स और क्रूर घटनाएं

0: दृश्य आंखों के सामने सजीव होने लगते हैं। आपको मालूम ही है लाल किले के प्राचीर के सामने चांदनी चौक में ही स्थित है गुरुद्वारा सीसगंज। सन 1675 में 24 नवंबर की वो तारीख थी जब यही हमारे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। गुरु साहब ने बलिदान से पहले गुरु साहब के बलिदान से पहले उनके शिष्य भाई मतीदास, भाई दयाला और भाई सतीदास के ऊपर भी बर्बरता भला कौन भूल सकता है। देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में भी ये दिल्ली स्थित चांदनी चौक एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक केंद्र रहा है। 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए ब्रिटिश सेना ने यहाँ की मुख्य सड़कों और कोतवाली के आसपास के क्षेत्रों में अपना दमन चक्र चलाया। क्रांतिकारियों को खुलेआम फांसी दी गई। 1857 में आपको याद होगा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले जिन्हें दिल्ली का आयरन वॉल कहा जाता था, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 में 32 साल की मात्र उनकी उम्र थी तब उनको इसी चांदनी चौक में फांसी पर लटकाया गया था खुले में। 23 दिसंबर 1912 को जब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली को राजधानी बनाने के उपलक्ष्य में इसी चांदनी चौक से होकर शाही जुलूस निकाल रहा था तब यहां घंटाघर के पास क्रांतिकारियों ने उस पर बम फेंका और उस हमले की योजना राजबिहारी बोस ने बनाई थी। उसमें मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद जी और बसंत कुमार विश्वास जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। बाद में बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी जबकि राजबिहारी बोस वेश बदलकर देश से बाहर निकल गए और जापान पहुंचकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उसके आगे का इतिहास आप सबको विदित है। सन 1915 से 1934 के बीच महात्मा गांधी ने चांदनी चौक में कई ऐतिहासिक बैठने की थी। यहाँ की मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी हो, गांधी मैदान हो, ये सब क्रांतिकारियों और देशभक्तों की बैठकों का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अंग्रेजों के दमनकारी कानून रॉलट एक्ट के को लेकर जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तब 1919 में ही स्वामी श्रद्धानंद जी ने चांदनी चौक के घंटाघर पर पुलिस की संगीनों के सामने खड़े होकर निडरता से रॉलट एक्ट का विरोध किया था। कोतवाली के सामने का जो क्षेत्र है इसी चांदनी चौक की एक गली में क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम के पर्चे और बुलेटिन चुपके चुपके छापा करते थे और पूरे शहर में बांटकर स्वतंत्रता की अलख जगाया करते थे। यहां चाहे वो कटरा नील हो, खारी बावली हो, दरीबा कला हो, इन सभी क्षेत्रों के व्यापारी और आम नागरिक भी इस लड़ाई में शामिल थे। और इस समय जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ जब शुरू होगा यहाँ का मुख्य आयोजन और वंदे मातरम के स्वर गूंजेंगे उसकी उत्कंठा में और उल्लास में बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ उपस्थित जनसमुदाय है विशेष रूप से बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं। प्राचीर की तरफ देख कर उनके उत्साह और उमंग की अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर साफ नजर आती है और जो पारंपरिक वेशभूषा में यहां बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं उनके स्वर, उनकी पहचान और उनकी आभा जो व्यक्तित्व की है वो भी बहुत आकर्षित कर रही है।
1: बिल्कुल जानेंद्र जी, और मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो बार बार टुकुर टुकुर निहार रहे हैं यहाँ ध्वज स्थल की ओर, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और सम्मानित प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। साथियों, आज का दिन हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए भी विशेष तौर पर मनाते हैं। विशेष तौर पर आज का दिन हमें ये अवसर देता है क्योंकि हम जानते हैं तुम न समझो देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। स्वतंत्रता संग्राम के चिर परिचित सेनानियों के साथ ही गुमनाम नायकों के प्रति आज कृतज्ञता का भाव है, तो आजाद भारत के उन वीरों का गुणगान भी है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। मंगल पांडे की पहली चिंगारी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई का दम्य साहस सब कुछ हमें प्रेरित करता है। और हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है। इस समय ध्वज

0: और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय ध्वज फहराते
1: हैं।

0: और इस समय आकाश आकाश में जो स्वर हमें सुनाई दे रहे ध्वनि सुनाई दे रही है वो उन हेलीकॉप्टर्स की है जो पुष्प वर्षा करते हुए लाल किले के प्राचीर के ऊपर से गुजर रहे हैं और लोगों की निगाह उसी आसमान की तरफ है। एक हेलीकॉप्टर ये Mi-17 हेलीकॉप्टर से भारतीय वायुसेना के, जिसमें एक हेलीकॉप्टर में राष्ट्रीय ध्वज उसमें दिखाई दे रहा है हवा के साथ अटखेलियां करता हुआ, और दूसरे हेलीकॉप्टर में नीचे लिखा है वंदे मातरम और पुष्प वर्षा करते हुए ये सभी यहाँ से हमारी बाईं तरफ से दाहिनी तरफ आसमान में आगे बढ़ते हुए बच्चों के बीच खासतौर पर उल्लास और फूलों की पंखुड़ियां यहाँ चारों तरफ बिखरी दिखाई देती है। खासतौर पर जो सफेद वेशभूषा में बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ ठीक सामने उनके कपड़ों पर सफेद रंग पर जो पुष्प है पंखुड़ियां है पीले रंग की वो बहुत ही खूबसूरत बहुत ही आनंदित करने वाली लग रही
1: जी। और जनेंद्र किस तरह से बच्चे उल्लासित होकर प्रधानमंत्री जी को भी निहार रहे हैं और उनकी कोशिश है कि एक दो पंखुड़ी को वो कैच कर पाए और ये पंखुड़ियां इस समय हमारे बूथ की ओर भी आई, बेहद रमणीय दृश्य है ये
0: जी। और राष्ट्रीय सलामी कारत अब राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद और राष्ट्रीय सलामी देने के बाद यहाँ से प्रस्थान करती हुई सेना के बैंड कुमायूं रेजिमेंट सेंटर जो इसमें शामिल थे जिसने

0: आज पहली बार ये इतिहास रचा गया, स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में पहली बार यहाँ राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन बजी, लेकिन सस्वर यहाँ उपस्थित हजारों लोगों ने उस गीत को अपने मुखारबिंदु से गाया है, चाहे वो प्राचीर के ऊपर बैठे हुए हमारे सभी अतिथियों दर्शक दीर्घाओं में या ठीक सामने हमारे बाई और दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में जो दर्शक दीर्घा में हजारों की संख्या में देश भर से पधारे हमारे दर्शक हैं, विशेष मेहमान हैं, दिल्ली वासी हैं, अलग अलग प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के वासी हैं, उन सबने अपने वेशभूषा में, जिसमें बहुत सारे लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में, खड़े होकर बड़े गर्व के साथ इस बार पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया। इस समय परेड कमांडर मेजर लोकेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलामी गारद जो है हमारी दाहिनी तरफ, जो उनका स्थल है इकट्ठे होने का, वहां आगे की तरफ लाल किले के प्राचीर से ज्ञानपथ से होते हुए यहां से प्रस्थान करते हुए और आतुरता से यहां उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमुदाय, देश के 145 करोड़ जनता और दुनिया भर के लोग आतुरता से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाल किले की ये प्राचीर, जिसने पिछले 12 वर्षों में विकास के नए नए प्रतिमानों का बीजारोपण जहां से हुआ है लाल किले के प्राचीर से, और इस प्राचीर से विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचने और जन जन की प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिला है। राष्ट्र को जब प्रधानमंत्री महोदय संबोधित करते हैं तो उसे सभी सुनते हैं, सभी प्रेरणा लेते हैं, सभी उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि आज राष्ट्र की प्रति सोच, राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदनाएं अपनी गहनता के शिखर पर हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, विकसित भारत बनना है। श्रोताओं,
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है, और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप, त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा,

भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है, तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सब

जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है, और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ थे, इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं, और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल फाइव के उस में डंप कर दिया था।

ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। अरे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े, सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए, हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए, हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया, हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती है। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी, जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले 1 दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता है, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो

सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी है, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है, आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लान, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लान, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसे ये चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है, पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है, भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए, नेशनल क्रिटिकल मिनरल यह हमने लॉन्च किया। बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है, कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं। विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल के विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है, और इसलिए हमें चिप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है, और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है, और इसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती है। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को अब कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है,

सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमें फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया है। और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले, मतलब आज से 12 साल पहले, हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था, आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं, हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है और इसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है। हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमें

इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया, 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां तो नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है। और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल। और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी। देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई। और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है, हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3,000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3,000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5,000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1,350 रुपये में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा। लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है।

दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। मुझे और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है मेरे प्यारे देशवासियों। दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईस को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे और हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स है उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्री तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफटीए के कारण हमारे श्रिप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है, हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है। और इसलिए मैं चाहूंगा हमें इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अगला एक चौथाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कैटल बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर,

मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे लिए कोई बजबड़ है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश, भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे ऊर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चाहे हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं 3 चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, यह समय का यह अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज। और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी होना चाहिए, यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्त धारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर हमें एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान

केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है, और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उस पर तेजी करनी चाहिए, और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट्स को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है, तब भारत विश्व के लिए बाजार बनकर के नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन ग्लोबल स्केल हमें पाकर के रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है, ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके चला है, तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है, और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं।

हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है उसकी राह देखता रहता है और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदाएं हैं, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है, क्षमता बहुत है, लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का, हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से कर और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र, दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत पर क्यों ना हो। कॉन्स्टेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है, विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सर्ट करे, ये बहुत बड़ा अवसर है। हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की सप्त शक्तियां उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है, दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो, भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए, भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए? टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी, हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा। और इसको अगर हम पढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है।

और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है, और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है, और देश के नौजवानों को उसने नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको। 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी, और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है, करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकर की लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है, ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया। आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल के एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने। बहुत बड़ा काम कर दिया है साथियों। आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती हैं, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया है।

2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज जो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20,00,000 करोड़ पहुंच चुकी है दोस्तों। दो हजार नौ दस का कालखंड था, सिर्फ 25,00,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25,00,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए, मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140,00,000 करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर मां बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए, 1,000,000 करोड़ रुपए का उनका खर्च है, वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता की है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बन करके आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत दो तिहाई खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2030

2026 में जो ओलंपिक होगा हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा, बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत ये हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओ ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दुर्बल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारे पुलिस के सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहू लुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल

ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को

और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है। अब युद्ध सीमा पर ही होता है गारंटी नहीं है। युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है। करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं। वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है। और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बेटियां निकली हैं वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी है। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है, मैं पिछले दिनों सानंद में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां, देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही थी। वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था। वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से यह सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में

आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ का। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं, वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बजे। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका 1 या 2 घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाले हैं। आपको लगेगा ये 1-2 घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं और इसलिए हर घर में वातावरण बने। इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी। इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सबसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए।

संकल्प को सामर्थ्य बनाएं और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहें। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाएं, कदम से कदम मिलाएं, मन से मन मिलाएं, लक्ष्य से जुड़े रहें। एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाएं। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बहुत बहुत आभार महोदय। और वो सामने
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रेरणादायी वक्तव्य आपके जो लंबे समय तक सभी को प्रेरित करते रहेंगे। और इस समय हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, शान से वो लहराता हुआ, और हमारे दाहिनी ओर से तीन रंगों के गुब्बारे इस समय गगन को चूमने के लिए तैयार ऊपर उठते हुए सभी की निगाहें इन गुब्बारों को देखती हुई माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय अपने केंद्रीय मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ध्वज स्थल से ही हाथ हिलाकर जो विशाल जनसमुदाय यहां पर उपस्थित है उनका अभिवादन, उनका स्नेह भी स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही जो एनसीसी कैडेट्स बैठे हैं, माई भारत के स्वयंसेवक इस समय बैठे हैं अपने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और बीच में नारंगी रंग से वंदे मातरम जिन्होंने लिखा है, वो करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान और स्नेह प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समय लाल किले की प्राचीर से उसके प्रांगण में प्रस्थान हो रहा है और सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए शान से हमारा तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ सभी की निगाहें कभी प्राचीर की ओर, कभी आसमान में उड़ते तीन रंगों के गुब्बारों की ओर और कभी दाहिनी ओर जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला उस ओर से आएगा कुछ ही देर में। और सभी इस उत्कंठा से भरे हुए कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने स्वयं को प्रधान सेवक कहा है, उन्हें नजर भर देख ले और अगर ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सर पर हाथ रख दें तो जीवन भर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक ऐसी याद रहेगी जो इन युवाओं को तो प्रेरित करेगी ही, साथ ही इनके पूरे परिवार को और विद्यालयों को भी प्रेरित करेगी। हम आपको बताएं कि हर घर तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो ये अभियान शुरू हुआ है 9 अगस्त से इस बार 17 अगस्त तक चलेगा। इस बार नया ये है कि सूर्य पथ तिरंगा भी हमारे पास है जिसने की भूखंड और कालखंड की सीमाओं को छोटा कर दिया है। यही है वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक भाव। अलग अलग देशों में जहां जहां ध्वज का भी, हमारे प्रिय तिरंगे का भी, विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावास और मिशन के परस्पर संयोजन से तिरंगा फहराया जाएगा, अनेक माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा, वैश्विक स्तर पर तकनीक का परंपरा के साथ समागम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही इस मंच से आपने बात की शक्ति की, सप्त धारा की, यही से पंचप्रण का उल्लेख हुआ, स्वच्छ भारत यहीं से हमने अपनाया और फिर उसे दुनिया को भी दिखाया कि भारतीय जब एकजुट हो जाएं एक लक्ष्य के प्रति तो क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना इसी मंच से हुई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विनिर्माण क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों को हासिल करने की प्रेरणा दी है, इनोवेशन का हब भारत को बनाने की बात कही है, भारत की सॉफ्ट पावर किस तरह दुनिया में अपना स्थान बना रही है इसका उल्लेख किया, तो साथ ही खेल क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र का भी उल्लेख किया है।
2: और इस समय
1: प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला हम देख रहे हैं कि इस समय बढ़ चला है ज्ञान पथ की ओर और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो उत्सुकता से अपने अपने स्थान पर खड़े होने को आतुर हैं। जानेंद्र,
2: निश्चित रूप से उनके लिए ये बहुत विशेष अवसर होता है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के बाद जब वे यहाँ से प्रस्थान कर रहे होते हैं, उस समय इन सभी उपस्थित बच्चों को उनका स्नेह मिलता है। यहाँ पर दर्शक कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भी बड़ी उत्कंठा से यहाँ उपस्थित होते हैं इस बात के लिए और उस काफिले के राह के किनारे कहीं खड़े होकर एक झलक पाने को आतुर होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का युवाओं के साथ जो जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, वो बहुत अद्भुत है और इसीलिए वो देश, चूंकि ये युवाओं का देश है और इस देश के भविष्य में 1 करोड़ ऐसे युवाओं को जो कि कर्तव्य को अपनी पहचान बनाए, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे, ऐसे 1 करोड़ युवा अपने आप को कौशल के साथ जोड़ते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं, इस बात का बहुत विशेष उल्लेख किया उन्होंने। इसके पहले भी उन्होंने अनेक बार युवाओं को केंद्र में रखते हुए अपनी विजन, अपने विजन को, अपनी सोच को यहां से, इस मंच से

0: साझा किया है। शक्ति की सप्तधारा का बहुत विशेष उन्होंने आज एक नई सोच दी है इस देश को और देश के प्रगति को, विकास को, और इसमें जो सात अलग अलग क्षेत्रों की उन्होंने बात की। दरअसल इसके पीछे चूंकि कार्य तो हर क्षेत्र में हो ही रहा है, लेकिन इसको गति देने की बात है, इसको शक्ति देने की बात है। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने वाहन से उतरकर बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, इसलिए करतल ध्वनि के जो गूंज है वो आप तक पहुंच रही होगी। प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उन बच्चों को अपना आशीष दिया है, और जो सात बच्चे वहां निकट हैं उनके, उन बच्चों के साथ वो हाथ मिलाकर उन्हें अपना स्नेह दे रहे हैं। इस समय बच्चों के लिए ये विशेष अवसर होता है, क्योंकि एक बार का दृश्य मुझे याद है, पहले का बच्चे जब खड़े होते हैं तो सभी सब निकट आने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में थोड़ी सी अफरा तफरी भी होती है, लेकिन चूंकि अनुशासन और संयम का एक दृश्य इस समय एनसीसी के विद्यार्थी यहां पर दिखा रहे हैं, तो वो दृश्य हम यहां पर देख पा रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए युवा साथी अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का और उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं।
1: जी, और जिन बालिकाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ मिलाया है उनके लिए तो ये एक ऐसा पल है जो वो लंबे समय तक याद करेंगी, और जब एक लक्ष्य चुनेंगी, अपने जीवन को एक दिशा देंगी, उस समय भी ये पल उन्हें अभिभूत करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय एनसीसी कैडेट्स के बीच से दोनों ओर हाथ हिलाते हुए जैसे एक साथ सभी को अपना स्नेह, अपना आशीष देना चाहते हों, और ये कैडेट्स जो हैं बहुत ही मुश्किल से संयम दिखा रहे हैं, इस समय अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं निर्देशों का पालन करते हुए, लेकिन अपना स्नेह लगातार प्रकट कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। हवा में दोनों हाथ हिलाते हुए नमस्कार भी कर रहे हैं, और साथ ही भारत माता की जय के नारे यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष लगा रहे हैं। मैं भारत के उज्ज्वल भविष्य का प्रमाण हूं, राष्ट्रहित में होने वाला सारा उत्थान हूं, स्वामी विवेकानंद के विचारों का चितवाण हूं, मैं युवा हूं, मैं भारत का प्राण हूं।
0: प्रधानमंत्री जी ने एक जो उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व से एक बात, एक संदेश जो साफ झलकती है वो है नई सोच नागरिक देवो भव का। नागरिक को केंद्र में रखते हुए अपने पूरे सुशासन के तंत्र को, व्यवस्था को उस ढंग से रूप देना, आकार देना। बच्चों के बीच से होते हुए प्रधानमंत्री महोदय अब दर्शक दीर्घा की तरफ जा रहे हैं। हमारी बाई तरफ जो दर्शक दीर्घाएं बनी है उसके रेलिंग के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़े उत्साह उमंग से अपने अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए, वे कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई फोटो खींचना चाहता है, कोई हाथ हवा में लहराते हुए प्रधानमंत्री जी का अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। देश का ये वो नेतृत्व है जो दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो विकसित भारत की सोच और विजन को इस देश को जिन्होंने दिया है, इस देश के करोड़ों युवाओं को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव जिन्होंने भरा है, और हर व्यक्ति आज, हर भारतवासी इस विश्वास के साथ कि भारत विकसित होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत अपने स्वदेशी सोच और अपने पुरातन चिंतन के साथ, धर्म और आध्यात्म के साथ विश्व में अपनी पहचान बनाएगा, भारत विकसित भी होगा, अपनी विरासत के साथ विकसित होगा। इस समय दर्शक दीर्घा में काफी आगे तक प्रधानमंत्री जी बढ़ चुके हैं, और उनकी इच्छा होती है कि कोई भी दूर दूर तक, जहां तक भी दर्शक आए हुए हैं, और बल्कि ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, इसमें ऐसी बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हैं जो अलग अलग जो सरकार की नीतियां रही हैं, उनकी योजनाएं रही हैं, उसका लाभ लेते हुए जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और उन सबको विशेष रूप से इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहां आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, आकर्षण की चीज ये लगती है कि वो सभी अपने अपने प्रदेश की अलग अलग वेशभूषा में यहां पर आए हुए हैं। अधिकांशता उसमें से वहां प्रधानमंत्री महोदय के निकट अपने आप को पाकर वो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे।
1: जी बिल्कुल जैनेन्द्र, और यहाँ पर भारत में जो अन्य देशों के दूतावास हैं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी है, इस समय वे भी बेहद आह्लादित महसूस कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी की यही शैली जो अपने देशवासियों से जुड़ने की शैली है, इससे दुनिया के बहुत सारे नेता प्रेरित हुए हैं, और यही वजह है कि खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों या हमारे पड़ोसी और एशियाई देशों या फिर कई संगठनों, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है, अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए हैं, सैन्य सम्मान दिए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यवहार से अन्य देशों को भी दिखाया है कि किस प्रकार से अपने देशवासियों से जुड़ना है, उनके आकांक्षाओं को कैसे समझना है, और किस प्रकार से उनके लिए जनहित की नीतियां बनाकर जन जन को राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरित करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने प्रिय ये जो जनता है इनसे भेंट करने के बाद, सासने भेंट करने के बाद अब पुनः जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन लगातार हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन।

0: स्वीकार करते हुए, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा कर्मी है उनके लिए ये थोड़ी सी कठिन घड़ी है, क्योंकि लगातार पैनी दृष्टि हर ओर उन्होंने बना रखी है, लेकिन वो भी समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं सबके स्नेह का, इसलिए उचित दूरी उन्होंने बनाए रखी है, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर स्नेहिल मुस्कान है अपने देशवासियों को देखकर, और साथ ही जो बच्चे हैं यहाँ पर उन्हें देखते हुए, और ये जो देशवासी है इस समय आभार प्रकट कर रहे हैं एक तरह से उन नीतियों के लिए जिन्होंने इनके जीवन में बड़ा बदलाव किया है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, जीएसटी हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी की कही ये उक्ति हो, हरित ऊर्जा हो, अंतरिक्ष अनुसंधान हो, जनधन से जन जन तक होता वित्तीय समावेशन हो, उन सभी के प्रति एक तरह से आभार प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहते हुए अपने जो ये संकेत है उनसे, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद नजदीक पहुंच गए कुछ एनसीसी कैडेट और सुरक्षा कर्मी, उन्हें स्नेहिल भाव से थोड़ा हटाते हुए वहां थोड़ा अनुशासन बनाते हुए स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का सपना, डिजिटल भारत जिसकी धूम अब दुनिया भर में है, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे हैं हमारे उत्पाद जो हैं वो वैश्विक गुणवत्ता के हो, हमारे बाजार दुनिया भर के लिए खुले रहें, और जब भी कोई विदेशी मेहमान हमारे यहां आता है तो जो भोजन परोसा जाता है उसमें हमारे हर प्रांत का कोई एक व्यंजन उसमें होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और साथ ही जो हमारे बुनकर हैं उनके द्वारा बुनी हुई जो वस्तुएं हैं वो भेंट स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी देश दुनिया के बड़े नेताओं को देते हैं, और बहुत सारी इस तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लगातार हमारे देशवासियों को मिलता रहा है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो मंच है गरिमामयी मंच है यहां से भी देश दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है, नए प्रयास किए हैं, देशवासियों को लगातार प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए, और अब नया लक्ष्य हमारे सामने विकसित भारत का जिसमें हम सभी को लगातार योगदान देना है।
1: आज प्रधानमंत्री जी ने इस लाल किले के प्राचीर से जहां संकल्पों की बात की, संकल्प से सामर्थ्य के निर्माण की बात की, और सामर्थ्य से सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए देश को समृद्धि की राह पर विकसित भारत बनाने का एक संकल्प उन्होंने दिया है। बीते 12 वर्षों में सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो तमाम प्रयास किए गए हैं उनके बारे में इस बात की परिकल्पना शायद पहले भी किसी ने नहीं की होगी कि उनका इतना बड़ा परिणाम और फल इस देश को मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जनधन योजना की ही, तो जब जनधन योजना की शुरुआत हुई आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेवा देश के कोने कोने तक पहुंची है, हर गांव तक पहुंची है, 99.92% गांवों तक इस सेवा की पहुंच बनी है, ये निश्चित रूप से 100% आप इसको कह सकते हैं, और किसी भी गांव में 6 लाख से अधिक गांव में देश में मात्र 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर भीतर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री महोदय बच्चों के बीच से निकलते हुए और एक बार फिर से प्राचीर की तरफ उन्होंने हाथ हिलाकर यहाँ के अतिथियों का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए अब अपने वाहन में वो सवार हो चुके हैं, और अब समय है जब 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतिम चरण में माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्र को संबोधित करने के बाद और यहाँ उपस्थित जनसमुदाय और विशेष रूप से युवा शक्ति के साथ संवाद और निकटता का एक भाव संप्रेषित करने के बाद अपने वाहन में सवार होकर यहाँ से अब प्रस्थान करने जा रहे हैं। आप सबके लिए उनकी तरफ से जो प्रेरणा मिली है इस राष्ट्र को निश्चित रूप से आगे लेकर जाएगी।
0: जी बिल्कुल, और माननीय प्रधानमंत्री जी अब अपने वाहन में सवार हो चुके हैं, वाहनों का काफिला मंथर गति से बूथ जो है हमारा उसकी बाई ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो अब पुनः अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, जो आगंतुक है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों की भी तस्वीर इस समय ले रहे हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री जी अपने वाहन के भीतर से भी हाथ हिलाकर लगातार सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नया देश है, नया भारत है, बदलती तस्वीर है जिसमें बेटियों को भी बराबरी मिल रही है, और इसी वजह से शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे तो सबसे पहले एक बेटी के सर पर हाथ रखा। सैन्य क्षेत्र, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, फैशन, खेल और उद्योग क्षेत्र में भारत माँ की बेटियां भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं। फाइटर कॉम्बैट लीडर बनना हो या ड्रोन दीदी, या फिर अपनी मेहनत से सफलता के नए अध्याय रचती लखपति दीदी हो, माँ भारती का नाम रोशन कर रही हैं देश की बेटियां। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे मेहनती खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण पदक जीते जिनमें 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, लगभग 3 करोड़ महिलाएं

0: लखपति दीदी बन चुके हैं, इस दिशा में नए लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं और ऐसे ही लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी हमें दिए हैं। मत पूछो मुझसे देश क्या है, ये कागज पर खींची रेखा नहीं, ये उन वीरों की आखिरी सांस है जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनके प्रति आभार प्रकट करने का दिन आज, लेकिन साथ ही जो राष्ट्र निर्माण में लगातार सहयोग करते रहे हैं उनके प्रति भी। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान, प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार और कलाकार, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाज सेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सैनिक और सशस्त्र बल, अपनी कर्तव्य निष्ठा से हम सभी को विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाना है, इसमें अपना दायित्व निभाते हैं प्रवासी भारतीय भी। सभी के ऊपर ये दायित्व के 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। और आपको फिर से एक बार आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मैं तकनीकी टीम प्रमुख श्री जितेंद्र पुरुथी, तकनीकी टीम के सदस्य शांतनु घोष, शक्तिधर ध्यानी, अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह, सुमित कटियार, नागेंद्र पटेल, नीरज तिर्की, बाबूलाल मीणा, राजकमल शर्मा, नरेंद्र नाथ, किरण पाल सिंह, विष्णु आनंद तिवारी, अतुल कुमार, हेमराज मीणा, विशाल कुमार, अभिषेक कुमार, कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती मनीषा जैन, कार्यक्रम टीम के सदस्य विवेक कुमार तोमर, तुषार पाराशर, शाहनवाज खान, भगवती चरण बौखंडी, जगमोहन सिंह, कार्यक्रम संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ मैं नीलम मलकानिया, अपने साथी कमेंटेटर जैनेन्द्र सिंह और देवेंद्र त्रिपाठी के साथ पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लेकर चलती हूँ। जय हिंद।
1: अभी आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को किए गए संबोधन का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
4: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
3: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
5: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
4: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
3: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।

0: नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। आकाशवाणी समाचार कक्ष की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया, 2047 तक हम विकसित भारत बनकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। समुद्र में नए अवसर तलाश करने के लिए नो गो एरिया के स्थान पर गो अहेड एरिया योजना की शुरुआत। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा, हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। उन्होंने कहा, सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। और अब समाचार विस्तार से। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है।
2: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपनी कार्य संस्कृति, अपनी सोच और काम की गति को बदलना होगा।
2: जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सुधार यानी रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आगे बढ़ चला है और अब नेक्स्ट लेवल यानी अगले स्तर के सुधार पर भी हम आगे बढ़ेंगे। श्री मोदी ने विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित व्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा की। उन्होंने गति शक्ति को सप्तधारा की चौथी शक्ति बताते हुए कहा कि निर्बाध और तेज कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा।
2: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने में संसाधन

0: साधनों की बाधा नहीं होती, बल्कि सोच की सीमाएं बाधा होती हैं। उन्होंने कहा कि आज देश को कच्चे तेल पर निर्भर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 99% समुद्र तट को नो गो एरिया को तेल भंडार की खोज के लिए गो अहेड घोर एरिया घोषित किया जाएगा।
1: हमने समुद्री तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया में हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
1: देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद देश में सेमीकंडक्टर को लेकर कोई बड़ी योजना नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज की डिजिटल दुनिया में हम चिप के महत्व को समझते हैं।
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि नक्सलवाद ने 4 दशक तक भारत की आबादी को दबोच कर रखा था। नक्सलवाद से निपटने में 3,500 से ज्यादा जवानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। श्री मोदी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त बनाने का आह्वान किया।
1: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी से पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन सभी के प्रयासों से देश को उस संकट से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था, सोचा नहीं था ये संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है, हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था ने नई रफ्तार पकड़ी है और एक नई गति से देश आगे बढ़ रहा है।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। जब 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, हम विकसित भारत बना कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों के पुरुषार्थ से ही संभव है।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में आए संकट का हर किसी पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने किसानों पर यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों में बड़ी कीमतों का असर नहीं आने दिया।
1: यूरिया के दाम दुनिया में 3,000 रुपए पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है और दुनिया से जो 3,000 रुपए में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपए में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी

0: आज दुनिया में बाजार 5,000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नशा मुक्त भारत के 100 सप्ताह के अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने देश के युवाओं से जनगणना में सटीकता के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायु सेना मेडल शामिल हैं। सरकार ने टेलीविजन चैनल्स के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की समय सीमा को हटाने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में आए बदलाव को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े नियमों पर फिर से विचार करने की जरूरत महसूस की गई। भारत में पे चैनल या फ्री टू एयर सभी बहुत हद तक विज्ञापनों पर ही निर्भर हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज श्रीलंका के गाले स्टेडियम में खेला जाएगा। यह श्रृंखला 2025-27 के ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और श्रीलंका टीम के कप्तान धनंजय डी सिल्वा हैं। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ आज तिरंगे की छटा बिखेर रहे हैं। कुछ अखबारों ने देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया है तो कुछ ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले सैनिकों और रक्षा कर्मियों की गाथाएं सचित्र प्रकाशित की हैं। इसके अतिरिक्त जनगणना प्रक्रिया में पूछे जाने वाले सवालों की सूची को भी अखबारों ने सुर्खियों में जगह दी है। अधिकांश समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर के नाम संदेश को भी मुख्य पृष्ठों पर सुर्खियों में प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख इस संबोधन में किए जाने को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। परीक्षा प्रणाली सुधारने में जुटी सरकार। हिंदुस्तान ने हाल में शौर्य का नया इतिहास रचने वाले रक्षा कर्मियों की वीरता की कहानियां प्रकाशित की है। शीर्षक दिया है तिरंगे को दिल दिया देश के लिए जान। नवभारत टाइम्स ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास रिलीज हुई फिल्मों का विश्लेषण प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता और दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने जनगणना में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उल्लेख अपने मुख्य पृष्ठ पर किया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है अभिव्यक्ति का हक। पत्र का कहना है कि इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि कुछ विद्यार्थियों के सिर्फ असहमति जताने या विरोध जाहिर करने की वजह से उनके समूचे समूह की पढ़ाई के आगे के रास्ते को बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाए। पत्र ने नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के दीक्षांत समारोह में भारत के प्रधान न्यायाधीश को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर कुछ विद्यार्थियों के विरोध पर दंडात्मक कार्रवाई का हवाला देते हुए ये भी कहा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग नागरिकों सहित खुद प्रधान न्यायाधीश की ओर से जैसी प्रतिक्रिया आई वो उम्मीद जगाने वाली है। दैनिक जागरण ने विभिन्न क्षेत्रों में देश

0: की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विश्लेषण प्रकाशित किया है और शीर्षक दिया है, गरीबी से गर्व करने की ओर भारत। जबकि लोकसत्ते ने स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा जारी यातायात परामर्श को विस्तार से प्रकाशित किया है।
1: अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा है कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां और भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहे हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया, 2047 तक हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्त धारा की घोषणा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में समुद्र में तेल भंडार की खोज के लिए नो गो एरिया को गो अहेड एरिया घोषित किया गया। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को अपनी स्वीकृति दी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योगों को मिलकर आगे बढ़ना होगा और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoists national flag at Red Fort in Delhi. Addressing the nation, Prime Minister unveils 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming Vikasit Bharat by 2047. Mr. Modi says India has set target of 100 gigawatt nuclear energy and set up 5 new reactors. Prime Minister says India has rapidly progressed in the last 12 years with significant progress in digital, manufacturing, infrastructure and social welfare sectors. President Draupadi Murmu says government taking comprehensive steps to curb unfair means in public examinations. President approves 78 gallantry awards including 13 posthumous for defence and Central Armed Police Forces personnel. And in cricket, first test of 2-match series between India and Sri Lanka to begin today at Gale. And now the news in detail. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at Red Fort in Delhi and addressed the nation. The celebrations this year also commemorates Yuva Shakti, acknowledging the contribution of young India in building a Vikasit Bharat by 2047. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, Prime Minister Modi said that this is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort.
3: आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
2: Prime Minister said, a nation becomes great when it moves forward on the strength

0: strength of its resolve and capabilities.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
0: Mr. Modi said that over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said due to these efforts, 25 crore people have come out of poverty.
1: पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं।
0: He said India, which was once among the fragile five economies, has now emerged as a major and the fastest growing economy in the world. Mr. Modi said that India has set a big goal to become a developed nation by 2047.
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है।
0: Highlighting the achievements made in different sectors, the Prime Minister said, over the past 12 years, defence production has increased nearly fourfold.
1: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया, इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े।
0: He said internet users increased by nearly fourfold and digital transactions by 100 times. Mr. Modi said the NDA government has worked with equal seriousness towards the welfare and amenities for the common man. Prime Minister said energy security is today's need and that's why we have already taken steps in this direction. Mr. Modi said the government is moving forward with the aim of 100 gigawatts of nuclear power capacity by 2047. He added that India has set a target of commissioning 5 new nuclear reactors during the current decade.
1: अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: Prime Minister said India has already begun production at 3 semiconductor plants and 5 to 8 more plants are expected to come up in the coming years.
1: देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी, हमारे यहाँ भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है, आज की डिजिटल दुनिया में चीप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चीप अनिवार्य है और इसे, इस चीप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो। भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुका।
0: Prime Minister

0: Minister said India must move towards self-reliance and not remain dependent on other countries. He asserted that the country needs to strengthen its own capabilities and protect its national interests.
1: बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना है। हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है, और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है।
0: Mr. Modi unveiled a 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming a Vikasit Bharat by 2047. He said work that could not be completed in the past 5 to 7 decades.

भाव आत्मानाचा तुसा नीला जवाब

0: श्रोते हो, ठीक एक वाजता आपण ऐकणार आहात हिंदी समाचार. हे दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणारं बातमीपत्र, आम्ही ते सहक्षेपित करीत आहोत.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार. राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया. श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान है.
2: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है. आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी शक्ति दिखाई. उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है.
2: हमने पिछले जो एआई इंपैक्ट समिट किया था, एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है. लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे.
1: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है.
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की. श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी. छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली. चेन्नई में 80वें स्वाधीनता दिवस पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सेंट जॉर्ज किला पर ध्वजारोहण किया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार जनता के लिए लाभकारी योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र के साथ सहयोग बनाए हुए है. मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहुमा ने कहा है कि राज्य संतुलित और समावेशी विकास की ओर अग्रसर है. आइजोल में स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री लाल दोहुमा ने कहा कि उनकी सरकार आत्मनिर्भर और विकसित मिजोरम बनाने तथा जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्यरत है. त्रिपुरा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाराजा वीर विक्रम महाविद्यालय में विशेष देशभक्ति संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया. वंदे मातरम इन 1000 वॉयसेज नामक इस कार्यक्रम में 1300 से अधिक विद्यार्थियों, पूर्व विद्यार्थियों और शिक्षकों ने एक साथ वंदे मातरम का गायन किया. लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमलों में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए. मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं. लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इसराइली सैनिकों को वापस जाना था. इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल शुरू करनी थी. इंडोनेशिया के फ्लोरेस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई. भूकंप से कई इमारतें भी ढह गईं. भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 आप लापता हैं. भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है. गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने चायकाल तक 1 विकेट पर 101 रन बना लिए थे. इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया. फिलहाल वर्षा के कारण खेल रुका हुआ है. इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: were 101 for 1 against hosts Sri Lanka in the first test of the two-match series at Gol International Cricket Stadium. Earlier, India won the toss and elected to bat. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, जागो ग्राहक जागो। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी निधि वर्मा और लेकर आई हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, 15 अगस्त का दिन है और आसमान में तिरंगा है, दिलों में गर्व है और आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ। वो फिल्म जिसने हमें सरहद का मतलब समझाया, जिसने सिखाया कि वर्दी के नीचे भी एक दिल धड़कता है, जिसके हर डायलॉग में देशभक्ति और हर फ्रेम में बलिदान है। फिल्म का नाम है बॉर्डर। मैं हूं आपकी रेडियो सखी निधि और अगले कुछ मिनटों तक हम लोंगेवाला की उस रात में जाएंगे जहां 120 जवानों ने 2000 के हमले को रोक दिया था, जहां संदेश आते हैं सिर्फ एक गाना नहीं, एक एहसास बन गया था। तो रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा तेज कर लीजिए और आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए उस मिट्टी को, उस वर्दी को और उस जज्बे को।

0: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है बॉर्डर। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी निधि। बात है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। लोंगेवाला की प्रसिद्ध लड़ाई पर आधारित यह एक ऐतिहासिक फिल्म है। इसमें सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की भूमिका निभाई है, जिन्होंने महज 120 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना के 2000 से अधिक सैनिकों और टैंकों का रात भर डटकर मुकाबला किया था। फिल्म की मुख्य कहानी युद्ध की पृष्ठभूमि दिसंबर 1971 में राजस्थान के लोंगेवाला रेगिस्तान में भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट की एक छोटी टुकड़ी तैनात होती है। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी मेजर कुलदीप को सूचना मिलती है कि भारी टैंकों और हथियारों के साथ पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा हमला होने वाला है। भेष छोड़कर पीछे हटने के बजाय मेजर कुलदीप सिंह वहीं रहकर दुश्मन का सामना करने का कड़ा फैसला लेते हैं और अपने साथियों के साथ उनमें जो

कुछ भरते हैं। अंधेरी रात में दुश्मन के टैंक भारतीय चौकियों पर हमला करते हैं। हमारे जवान अदम्य साहस दिखाते हुए खंदकों से लड़ते हैं और टैंक रोधी हथियारों से दुश्मन को रोकते हैं। वायुसेना की मदद सुबह होने पर भारतीय वायुसेना के हंटर्स विमान आ जाते हैं और बचे हुए पाकिस्तानी टैंकों को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं।

0: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: वंदे मातरम पहली मरतबा लाल किले में गाया गया। वजीर आजम ने अपने खिताब में ऐलान किया कि गरीब और मतवसित तबके के कुंबों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को मसनूई जहानत AI की तरबियत फराहम की जाएगी। वजीर आजम ने कहा है कि अहम मादनियात के शोबे में भारत एक काबिल एतमाद आलमी शराकत दार के तौर पर उभर रहा है और कई ममालिक के साथ इस सिलसिले में समझौते किए जा रहे हैं। जनाब मोदी ने बाद ममालिक की जानिब से अपनी बालादस्ती जाहिर करने के लिए वसाइल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इस चैलेंज का सामना करने के लिए भारत की आत्मनिर्भरता के जज्बे को सराहा। बैरून मुल्क मौजूद भारतीय सिफारती मिशनों ने भी हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ योम आजादी मनाया और इंडोनेशिया के मशरकी साहिली इलाके में 7.7 शिद्दत का जलजला आने से कम अज कम 30 अफराद हलाक हो गए। अब खबरें तफसील से। मुल्क आज 80वां योम आजादी मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में तारीखी लाल किले से योम आजादी की तकरीबात की कयादत की। वहां पहुंचने पर पहली बार कौमी तराना वंदे मातरम बजाया गया, कौमी परचम लहराया गया, 21 तोपों की सलामी दी गई और फजाइया के MI-17 हेलीकॉप्टरों ने फूलों की पत्तियां बरसाई। इस साल की तकरीबात में युवा शक्ति की अहमियत को तस्लीम और उजागर किया गया, जो 2047 में विकसित भारत बनाने में एक अहम किरदार अदा करेगी। लाल किले की फसील से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने वंदे मातरम गाए जाने को एक तारीखी लम्हा करार दिया। उन्होंने कहा है कि मुल्क नए जोशो खरोश और जज्बे के साथ तरक्की की राह पर गामजन है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: वजीर आजम ने मोदी की आमद के बाद फौज की तीनों शाखों और दिल्ली पुलिस के मुश्तरक गार्ड से उन्हें सलामी दी। कौमी परचम फहराने के बाद भारतीय फजाइया के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने तकरीब के मकाम पर फूल बरसाए। इनमें से एक हेलीकॉप्टर ने कौमी परचम जबकि दूसरे ने वंदे मातरम की अक्कासी करने वाला परचम उठा रखा था। वजीर आजम की तकरीर के अख्तिताम पर NCC कैडेट्स और माई भारत के रजाकारों ने कौमी गीत वंदे मातरम गाया, जिसके बाद कौमी तराना पेश किया गया। तकरीबात में बर्री फौज, बहरिया और फदाइया के कुल 2500 लड़के और लड़कियों पर मुश्तमिल कैडेट्स और माई भारत के रजाकारों ने शिरकत की। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 5000 खुसूसी मेहमानों ने योम आजादी की तकरीबात का मुशाहदा किया। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ पब्लिक इम्तहानात के लिए मुतवस्सित तबके के कुंबों और गरीब उम्मीदवारों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह काबिल और चोटी के असातिज़ा की रहनुमाई में मियारी तालीम की रसाई के लिए एक इनकलाबी कदम है। उन्होंने कहा कि इस तरह कोचिंग में खर्च होने वाला मुतवस्सित तबके के कुंबों का करोड़ों रुपया बचेगा।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: वजीर आजम ने कहा है कि सरकार ने फैसला किया है कि अगले एक साल के दौरान 1 करोड़ नौजवानों को AI हुनरमंदी की तरबियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह ये नौजवान AI के आलमी शोबे में कायदाना किरदार अदा कर सकेंगे। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क को लागत, मेयार और हुनर पर तवज्जो मरकूज करनी होगी। वजीर आजम ने कहा कि अहम मदनियात के शोबे में भारत एक काबिल एतमाद आलमी शराकत दार के तौर पर उभर रहा है और कई ममालिक के साथ इस सिलसिले में समझौते किए जा रहे हैं। जनाब मोदी ने बाज ममालिक की जानिब से अपनी बालादस्ती जाहिर करने के लिए वसाइल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिशों पर भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इस चैलेंज का सामना करने के लिए भारत की आत्मनिर्भरता के जज्बे को सराहा। वजीर आजम मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मुल्क के करोड़ों अफराद ने अपने अज़्म मुसम्मम और लगन के साथ मुल्क को तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में हासिल की गई तरक्की का जिक्र करते हुए

आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं हबीब रहमान। मुल्क आज अपना 80वां यौमे आजादी जोशो खरोश के साथ मना रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर कौमी परचम फहराकर मुल्क की यौमे आजादी तकरीबात की।

0: आजम ने कहा कि पिछले 12 साल के दौरान दफाई पैदावार में लगभग 4 गुना, खादी और गांव की सनतों की पैदावार में लगभग 5 गुना, बिजली के साजो सामान की तैयारी में तकरीबन 7 गुना, रेलवे के जदीद डिब्बे बनाने की तैयारी में 21 गुना और मोबाइल फोन बनाने में तकरीबन 33 गुना का इजाफा हुआ।
1: हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। हजारों की संख्या में कंप्लायंसेज खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि भारत ने 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क का मकसद हासिल करने के लिए पेशकदमी करते हुए ऐसे बहुत से बहरानों पर कामयाबी से काबू पाया है जिनकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। उन्होंने इस सिलसिले में कोविड-19 की वबा, यूक्रेन और मगरबी एशिया के तनाजे का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस वक्त हर मुल्क ने अपने मफादात की तकमील और उसके तहफ्फुज़ के लिए काम किया, लेकिन बदकिस्मती से बहरान की इस घड़ी में कुछ मुल्कों ने पेट्रोल, डीजल और कीमियाबी खाद को हथियारों के जरिए के तौर पर इस्तेमाल किया।
1: दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है। रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चीप, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे कर। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी को खराज-ए-अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत महात्मा गांधी के काम और नजरियात से हमेशा तहरीक हासिल करती रहेगी। बैरूनी मुल्कों में वाक़ भारत के सफारतखानों और कौंसिल खानों से भी इस मौके पर परचम लहराने, सकाफती प्रोग्रामों और दूसरे इज्तमाही प्रोग्रामों की खबरें मरसूम हो रही हैं। सिंगापुर, चीन और हांगकांग में हजारों भारतीय बाशिंदे और उनके अरकान खानदान योम आज़ादी की तकरीब में शामिल हुए। उन्होंने खित्ते के आवाम के साथ भारत के मजबूत ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। सिंगापुर में भारत के हाई कमिश्नर शिल्प कांबुले ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर 2500 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। इस तकरीब के दौरान हुब्बुल वतनी के नगमे, कौमी तराना और वंदे मातरम पेश किया गया। इंडोनेशिया के फ्लोरेस इलाके के करीब आज सुबह 7.7 शिद्दत का जलजला आया जिसके नतीजे में कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए। जलजले के 22 इमारतें मुनहदिम हो गई, मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात पेश आए और बड़े पैमाने पर खौफ व हरास फैल गया। 6 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला है जबकि 2 लोग लापता हैं। जलजले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी की गई है जिसे सतह समंदर में कोई खास तब्दीली नजर न आने के बाद वापस ले लिया गया। बिजली की सप्लाई मुतासिर होने और मुआसलाती निजाम में खलल की वजह से बचाव और इमदादी कामों में दुश्वारी पेश आ रही है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क आज अपना 80वां यौम आजादी जोश खरोश के साथ मना रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर कौमी परचम फहराकर मुल्क की यौम आजादी तकरीबात की क्यादत की। वंदे मातरम पहली मरतबा लाल किले में गाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में ऐलान किया कि गरीब और मतवसित तबके के कुंबों के लिए ऑनलाइन कोचिंग और अगले 1 साल में 1 करोड़ नौजवानों को मस्नूई ज़हानत AI की तरबियत फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अहम मैदानियात के शोबों में भारत एक काबिल-ए-एतमाद आलमी शराकतदार के तौर पर उभर रहा है और कई ममालिक उसके साथ इस सिलसिले में समझौते किए जा रहे हैं। जनाब मोदी ने बाज़ ममालिक की जानिब से अपनी बालादस्ती जाहिर करने के लिए वसाइल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया। बैरून मुल्क मौजूद भारतीय सफारती मिशनों ने भी हिब्बुल वतनी के जज्बे के साथ यौम आजादी मनाया और इंडोनेशिया के मशरकी साहिली इलाके में 7.7 शिद्दत का जलजला आने से कम 20 अफराद हलाक हो गए। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Nation celebrates its 80th Independence Day today with enthusiasm. Prime Minister Narendra Modi leads the nation by hoisting the national flag at Red Fort in Delhi. Vande Mataram rendered

नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों

0: बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत आत्मनिर्भरता की भावना से इस चुनौती का सामना कर रहा है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 106 रन बनाए। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फॉल में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार देश केवल संसाधन की कमी के कारण नहीं बल्कि सीमित सोच के कारण भी पिछड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ा है और ये भी सीमित सोच का परिणाम था। श्री मोदी ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
1: हमने समुद्र तट पे समुद्र के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमें फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 7-8 वर्ष में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर का निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
0: स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद

0: निरंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्र ध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से राष्ट्र के विकास में योगदान देने और राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियों से दूर रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में मातृभूमि के प्रति गहरे श्रद्धा के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।
2: कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुरेंद्र अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित बंगाल विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है। रेड रोड परेड में राज्य सरकार की कई झांकियां प्रदर्शित की गई, जिनमें पीएम सूर्य घर योजना और विकसित भारत जी राम जी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। राज्यपाल RN रवि ने बैरकपुर के गांधी घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता से आकाशवाणी समाचार के लिए कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ मैं कुमार राधारमण।
1: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह श्रीनगर के प्रसिद्ध बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया।
3: स्वतंत्रता दिवस के हवाले से सबसे बड़ा समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आजकल के हालात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आजादी के 80 साल बाद जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बनने का फैसला सही साबित हुआ है। इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर के लोक भवन में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: छत्तीसगढ़ में 80वां स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।
2: रायपुर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है।

0: क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहाँ आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। कभी माओवाद से प्रभावित रहे और अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके राज्य के बस्तर संभाग के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद आज पहली बार स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: केरलम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की।
2: तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने परेड की सलामी ली। विभिन्न सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ माउंटेड पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संदेश देने के बाद पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा तथा कारागार विभाग के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए। कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान समारोह में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान नौसेना के जहाजों को झंडों से सजाया गया। इडुक्की में बांधों और नौका केंद्रों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए, जिनमें पर्यटकों ने भी भाग लिया। कोवलम बीच के निकट एक निर्जन द्वीप पर तटरक्षक बल ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। स्मिथी एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: वैश्विक नेताओं ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का उल्लेख किया है। इजराइल के राजदूत रूबेन अजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिना, श्रीलंका के उच्चायुक्त महर्षिनी कुलून, नेपाल दूतावास, फ्रांस दूतावास, ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायुक्त ने भी भारत की विरासत, विविधता, आर्थिक क्षमता और बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए शुभकामनाएं दी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वाले और मालदीव नेशनल पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने भारत के विकास और मालदीव के साथ घनिष्ठ साझेदारी की प्रशंसा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 118 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत। और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 118 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

रहे हैं और ये वक्त है प्रोग्राम एक ही कलाकार का। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। श्रोताओं, 15 अगस्त 1947 वो ऐतिहासिक तारीख है जब भारत ने आज़ादी की सांस ली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी ऐतिहासिक दिन पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के छोटे से कस्बे रानाघाट में एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ था, जिसकी कजरारी आंखों और सादगी भरी मुस्कान ने आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान के दिलों पर राज किया।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 2:30 हो

जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सर्वकालिक महान और भावुक अदाकारा राखी गुलजार की। आकाशवाणी परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस पर इनको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, राखी जी एक साधारण बंगाली परिवार में पैदा हुई। पिता जूतों का बिजनेस करते थे। विभाजन से पहले परिवार पूर्वी बंगाल में रहता था, लेकिन बाद में वे रानाघाट आ गए। राखी का बचपन साधारण लेकिन संघर्ष भरा था। ये पढ़ने लिखने में अच्छी थी, लेकिन जिंदगी ने इनके लिए कुछ और ही रास्ता चुना था। परिवार की इच्छा से महज 16 साल की उम्र में इनकी शादी एक पत्रकार और बंगाली फिल्मकार अजय विश्वास से हुई, लेकिन शादी के दो साल बाद ही ये दोनों अलग हो गए। मुश्किल वक्त के बावजूद राखी जी ने हिम्मत नहीं हारी। ये मुंबई आई और फिल्मों की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। उस समय इंडस्ट्री में ना कोई इनका कोई रिश्तेदार था, ना कोई जान पहचान का सहारा। ये पूरी तरह अकेली थी, लेकिन इनकी सुंदरता, गंभीर अंदाज और बंगाली संस्कृति की छाप ने लोगों का ध्यान इनकी तरफ खींचा। जिंदगी ने उस कठिन मोड़ पर जहां लोग हिम्मत हार जाते हैं, वहां राखी गुलजार जी ने अपनी आंखों में एक नया सपना सजाया। कैसे वो सपना साकार हुआ, ये हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए फिल्म शर्मिली का ये प्यारा सा गीत।

वेलकम बैक दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से एक ही कलाकार कार्यक्रम। और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो हैं राखी गुलजार, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। तो श्रोताओं, आज हम बात कर रहे थे एक्ट्रेस राखी जी की जिंदगी से जुड़े उन अनसुने किस्सों की। इनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत बंगाली सिनेमा से हुई। 1967 में इन्होंने बंगाली फिल्म मधुभरन से अपने अभिनय की शुरुआत की। बंगाली सिनेमा में इनकी सादगी और प्रतिभा की तारीफ हुई, लेकिन राजश्री प्रोडक्शन की नज़र इस बंगाली सुंदरी पर पड़ी और राखी गुलजार को एक्ट्रेस धर्मेंद्र के ऑपोजिट हिंदी फिल्म जीवन मृत्यु में लीडिंग एक्ट्रेस के रूप में कास्ट किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इस एक ही फिल्म ने राखी को रातों रात स्टार बना दिया। इसके ठीक बाद फिल्म शर्मीली, जिसमें राखी गुलजार जी ने डबल रोल किया था कंचन और कामिनी की शानदार भूमिका निभाई। शशि कपूर के साथ इनकी जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। फिल्म लाल पत्थर, पारस, आंखों आंखों में और जोशीला जैसी फिल्मों में भी राखी की अदाकारी को पसंद की गई। यश चोपड़ा जी की फिल्म दाग, अ पोएम ऑफ लव में राखी जी की एक्टिंग ने सभी को चौंका दिया। फिल्म के लिए इन्हें इनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। पर दोस्तों, राखी जी का अभी गोल्डन पीरियड बाकी था, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल सुनिए इनकी एक और खूबसूरत फिल्म से एक और खूबसूरत सा गीत।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ही कलाकार में राखी गुलजार जी की। श्रोताओं, 70 के दशक में राखी जी का जो करियर था वो टॉप पर था। फिल्म तपस्या में इनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिर यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी रिलीज हुई। इस फिल्म में राखी जी की भूमिका इतनी दमदार थी कि आज भी लोग उसे याद करते हैं। आगे मुकद्दर का सिकंदर और शक्ति फिल्म में भी इन्होंने यादगार भूमिका निभाई। दिलचस्प बात यह है कि शक्ति फिल्म में इन्होंने अमिताभ बच्चन जी की माँ की भूमिका निभाई थी। इसके बाद ये फिल्म त्रिशूल, जुर्माना और बसेरा जैसी फिल्मों में भी छाई रही। इनकी खासियत ये थी कि ये कम बातें बोलती थी लेकिन आंखों से बहुत कुछ कह देती थी। राखी जी ने कमर्शियल और कलात्मक दोनों तरह की फिल्मों में सफलता के झंडे गाड़े। तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं फिल्म कभी कभी का ये अमर गीत। इसके बाद राखी जी की निजी जिंदगी और करियर के दूसरे दौर की बात करेंगे। फिलहाल आनंद लीजिए इस गीत का।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो हैं राखी गुलजार, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं उनके जीवन से जुड़े पहलुओं की, उनके प्रोफेशन से जुड़े पहलुओं की। तो चलिए बात करते हैं राखी जी की निजी जीवन में। ये उतना ही चर्चा में रही जितना इनका करियर रहा। फिल्मों में बिजी रहने के दौरान इनकी मुलाकात फेमस गीतकार, कवि और डायरेक्टर गुलजार साहब से हुई। गुलजार साहब का असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। दोनों एक दूसरे की प्रतिभा से प्रभावित हुए और 15 मई 1973 के को दोनों ने शादी की। इस साल इन दोनों की बेटी मेघना गुलजार का भी जन्म हुआ। मेघना भी आज एक फेमस डायरेक्टर है और जिसने कई शानदार फिल्में डायरेक्ट की हैं। दूसरी तरफ राखी जी ने लीड एक्ट्रेस के बाद फिल्मों में मां के किरदार को अमर बना दिया। 80 और 90 के दशक में राखी जी ने अपनी भूमिका बदल दी। वे मेन हीरोइन से मां की भूमिका की ओर मुड़ी और यहां भी अपनी छाप छोड़ी। इस बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल सुनिए इनकी फिल्म कस्मे वादे का ये शानदार सा गीत।

दोस्तों, जहां कई एक्ट्रेस का करियर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, वहीं राखी जी ने खुद को नए रूप में ढाल लिया। इन्होंने फिल्मों में मां के किरदार को यादगार बना दिया। फिल्म राम लखन में इनकी एक्टिंग आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। करण अर्जुन फिल्म का वो डायलॉग याद है, मेरा करण अर्जुन आएगा, आज भी लोगों के जहन में है। इसके बाद बाजीगर, खलनायक अनाड़ी और बॉर्डर जैसी हिट फिल्मों में इन्होंने मां के किरदार को रियलिस्टिक बना दिया। राखी जी ने ये साबित किया कि उम्र बढ़ने के साथ कलाकार का महत्व कम नहीं होता, बल्कि अनुभव उसे और मजबूत बनाता है। दर्शकों ने इन्हें एक नई पहचान दी और नई पीढ़ी ने भी उन्हें उतना ही प्यार दिया जितना पहले दिया था। इस बात पर चलिए सुनते हैं इनकी फिल्म बेमिसाल का ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और हमारे पास कुछ हमारे श्रोताओं के मेल आ गए हैं। छत्तीसगढ़ पलियारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा का, जॉन डिकोस्टा, रोजी पर्ल्स और विलिस जनकपुरी सहारनपुर से, और ये हैं जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, रानी, गुरमत और मनु, और ये है दिल्ली बिरहारी कॉलोनी शादरा से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन और डब्बू सम्राट का, और सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, और ये गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादरा से वीना मस्कीन, आशीष राज, चैतन्य, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केसु खुराना जी का, गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुंडी और प्रमोद कुमार हैं हमारे साथ जुड़े हुए, और आगे चलते हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार जी, और गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू मधु, पहाड़गंज मुल्तानी, ढांडा से वडिंगा खेड़ा से पंजाब, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जी का। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं हमारी एक्ट्रेस राखी गुलजार जी के बारे में। आज राखी गुलजार जी का 79 साल की उम्र में मुंबई पनवेल के पास अपने फार्म हाउस में शांति से जीवन जी रही हैं। ये पशु पक्षियों की सेवा करती हैं, खेती बाड़ी में इनका इंटरेस्ट है और किताबें पढ़ने का इन्हें बहुत शौक है। अब ये फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहना पसंद करती हैं, हालांकि कभी कभी बंगाली फिल्मों में नजर आ जाती हैं। पिछले साल ही इन्होंने एक बंगाली फिल्म में काम भी किया था। सिनेमा में अपने इस योगदान के लिए इन्हें 2003 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। दोस्तों, राखी गुलजार जी की कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं बल्कि एक मजबूत महिला की है, जिसने हर मुश्किल परिस्थितियों का डटकर सामना किया और दूसरों के लिए मिसाल बनी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। तब तक के लिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए, लेकिन जाते जाते एक बात कहना चाहूंगी। इस स्वतंत्रता दिवस पर हमें अपने विचारों, कर्मों और ऊर्जा को सकारात्मक बनाएं और राष्ट्र निर्माण में योगदान करें। जय हिंद, जय भारत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की जो हमारी कलाकार थी वो थी राखी गुलजार। ये आकाश में दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोतान को श्रुति बुरी की
1: और वंदना की
0: राधे राधे। वंदना, हाँ जी, कैसा पावन पर्व है आज। सुबेरे ते ही जगह जगह पे तिरंगा

0: घर घर तिरंगा लगे भए हैं और हर ब्रजवासी के मन में, हर देशवासी के मन में देशभक्ति की जो भावना है, यह समय इन तिरंगान में प्रतीत है रही है।
1: हाँ जी जी बिल्कुल सांची कह रही हो, कितना अच्छा और अनुपम, कितना बढ़िया लग रहा है।
0: देखो वंदना, ब्रज भूमि की अगर हम बात करें तो ब्रज में अनेक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भए हैं जिन्होंने आजादी के दाई अपने प्राणन की आहुति भी दई और अपना सर्वस्व जीवन देश की सेवा में समर्पित किया हो।
1: हाँ जी, देखो हमारे देश को स्वतंत्र बनाए के काजे वीर सपूतन ने खूब बलिदान दिए और हमारे देश को स्वतंत्र कर दियो। और जी, सब देशवासियों के दिल में अपने देश के काजे वो भाव हैं कि हमारा देश आजाद है और वो खूब अपने आजादी को जश्न मनावे और खूब पतंग उड़ावे, झंडा फहरावे, स्कूलन में खूब झंडा फहरते हैं और जगह जगह प्रतियोगिताओं में, और बहुत ही अच्छा लगे।
0: और तुम ये बात भूल गई वंदना कि जो स्कूलन में जो मिठाई बटाओ करें, बूंदी के लड्डू बटे, बूंदी
1: हाँ जी
0: बटे।
1: जी हमारे जमाने में तो बूंदी बढ़ती और बूंदी लेवे के काजे हम भागे चले जाते स्कूल और ड्रेस
0: हाँ
1: ऐसी प्रेस करके जाते और है तैयार है के। और जी जी हमें खाइबे पीबे को तो शौक हतो ही हो।
0: और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हूँ तो भाग लेते।
1: हाँ जी जी खूब सज धज के आजू बच्चे नाचे कूदे खूब
0: और
1: स्कूलन
0: मुझे
1: में।
0: तो ये याद है कि मैं एक बार बचपन में कवयित्री बनी थी और मैंने वीर रस की कविता खूब जोर जोर से पढ़ी।
1: अच्छा जी जी पता है आपको हमारे कार्यक्रम में हूँ आज कवि गोष्ठी है और हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं खूब सारे कवि और कवित्री।
0: तुमने तो मेरी बात पकड़ ली है, हमने कवयित्री की बात करी तो तुम सब कवि सम्मेलन करवाए हुए
1: और का
0: लगी हो
1: जी
0: आज।
1: जी जाते बढ़िया कहा बात होगी हमारे कार्यक्रम की।
0: तो कौन कौन आ रहे हैं आज ये तो बताए दो।
1: हाँ जी, देखो हमारे कार्यक्रम में मंजुषा के आई बही हैं, डॉक्टर सोहनलाल शीतल आए बही हैं और सुनीता कुमारी आई बही हैं, संगई सुनील कुमार रहते हैं और बिनके संग के राजस्थानी हुआए हैं कार्यक्रम के कवि गोष्ठी में।
0: तो श्रोताओं आनंद लियो या कवि गोष्ठी को।
2: नमस्कार, आज की या राष्ट्रीय कवि गोष्ठी में मेरे संग मौजूद हैं आदरणीय श्रीमती मंजू साक्या जी, के राजस्थानी जी, सुनीता कुमारी जी और सुनील कुमार जी और मैं स्वयं डॉक्टर सोहनलाल शीतल। कवि गोष्ठी को आरंभ करने से पहले मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि वेदना भारती की तार तार हो जाए, वेदना भारती की तार तार हो जाए और मझधार भी हंसता कगार हो जाए। आओ मिलके यारो खिलाएं गुल, कोई ऐसा वतन की बगिया में फिर से बहार हो जाए। मैं अनुरोध कर रहा हूँ आदरणीय मंजू साक्या जी से कि वो आए और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें।
3: ब्रज माधुरी के सब श्रोतन को मंजू साके की राधे राधे। और जैसे सबन को पता है कि 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, तो आज बात करें कुछ वीरन की जिनने
1: धन्यवाद,
3: जा देश पे
1: स्वागत
3: जान
1: स्वागत
3: दे दी।
1: स्वागत
3: तो ऐसे एक वीर की पार्थिव शरीर पड़ो है और वह
1: स्वागत
3: शरीर को देख के बाकी माता पिता घर वालन को का हाल हेरो है। एक छंद के माध्यम से आप सबन तक पहुंचा रही हूँ, सुनो।
1: स्वागत स्वागत।
3: कि छलक उठो है माँ के आंचल से दूध और छलक उठो है माँ के आंचल से दूध और लाल रंग है गयो है आँखियों के पानी को श्वेत रंग में लिपट बोली वीर वधु आज बेरंग भयो है रंग सारी जिंदगानी को।
4: हाँ बहुत बढ़िया
3: बहना बोली रोए रोए मेरी छोड़ो भैया काहे, बहना बोली रोए रोए मेरी छोड़ो भैया काहे, आयो ना ख्याल तुम्हें बिटिया सयानी को।
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
3: पी के निज आंसुओं को दे रहे सलामी तात, नैनन से चूमे भाल वीर बलिदानी को, नैनन से चूमे भाल
4: मजा आएगा,
3: वीर बलिदानी को।
1: बहुत सुंदर आनंद
3: अब
1: आएगा।
3: स्वतंत्रता दिवस के बाद की रक्षा बंधन आ जाता है, पता है आप सबन को।
1: स्वागत।
3: अब राखी आएगी तो बहन परेशान हो रही भैया की फोटो को देख देख के और का कह रही है, सुनो।
1: स्वागत।
3: कि माने तिरंगा को राखो है भैया ने, माटी को माथे लगाए रही है।
1: बहुत सुंदर।
3: माने तिरंगा को राखो है भैया ने, माटी को माथे लगाए रही है। वीर गति को गयो जा को वीर की सुत्त में आंसू बहाए रही है। थाली में रोली और चंदन धार के याद पुरानी में जाए रही
1: हाँ
3: है।
1: बहुत अच्छे।
3: और बोले रही बाकी फोटो तबीर तू आ जाना राखी बुलाए रही।

0: बोले
1: नहीं
0: नहीं
1: माखी
0: राखी
1: फोटू तबीर तू आ जाना राखी बुलाए रही है।
0: में।
1: तो ऐसे जाने कितने वीर हैं जो
0: स्वागत
1: हमारे भारत भूमि की माटी की रक्षा करते हुए शहीद
0: स्वागत
1: है गए हैं। तो आज
0: स्वागत
1: मेरा मन है कि एक कहानी सुनाए तुम्हें भारत की,
0: स्वागत स्वागत
1: एक
0: स्वागत
1: गीत के माध्यम से सबन तक पहुंचा रही। सुनो कि चलो आज तुमको सुना मैं कहानी भारत हमारे
0: बहुत
1: की।
0: अच्छे
1: चलो आज तुमको सुना मैं कहानी भारत हमारे की। भारत हमारे की देश के दुलारे की,
0: हाँ बहुत सुंदर
1: भारत हमारे की देश के दुलारे की। चलो आज तुमको सुना मैं कहानी भारत हमारे की। तीन रंग को झंडा अंबर लो फहरो, तीन
0: अरे
1: रंग को झंडा अंबर लो फहरो, लाल हरो केसरिया रंग बड़ो गहरो,
0: सुंदर क्या कहने।
1: जाके बीच चक्कर है नीलो कहानी भारत हमारे
0: बहुत
1: की।
0: अच्छे
1: चलो
0: वाह
1: आज तुमको सुना मैं कहानी भारत हमारे
0: बहुत
1: की।
0: अच्छा बहुत अच्छा
1: कि राणा शिवाजी भगत सिंह जैसे अनगिन बहादुर मिटे प्राण दे के, गांधी अहिंसा की बानी कहानी भारत
0: हमारी
1: हमारे
0: बहुत
1: की।
0: सुंदर बहुत बढ़िया
1: चलो
0: बहुत सुंदर
1: आज तुमको सुना मैं कहानी भारत हमारे
0: बहुत
1: की।
0: बढ़िया
1: बहुत
0: बहुत
1: अच्छी
0: बढ़िया बहुत
1: बहुत अच्छी।
0: सुंदर।
1: कि रानी भाई वीर लक्ष्मी के जैसी, रानी भाई एक लक्ष्मी के जैसी, करी अंग्रेजन की ऐसी की
0: क्या बात है
1: तैसी,
0: ऐसी है
1: बन के लड़ी जा मर्दानी कहानी
0: भारत
1: भारत हमारे
0: हमारे। बहुत
1: की।
0: बढ़िया बहुत बढ़िया
1: वाह
0: बहुत
1: चलो
0: बढ़िया
1: आज तुमको सुना मैं कहानी भारत हमारे की।
0: बहुत
1: कि
0: सुंदर
1: जल थल गगन में रहे जा की सेना, जल थल गगन में रहे जा की सेना, बैरिन को चब्बा वेलोए को
0: चलेगा। बहुत
1: चलेना,
0: अच्छे बहुत अच्छे
1: दुश्मन भरे आए पानी
0: पानी।
1: कहानी
0: वाह वाह वाह
1: भारत
0: वाह हमारे
1: हमारे
0: की
1: की।
0: क्या बात
1: दुश्मन
0: है क्या कहने क्या।
1: भरे आए पानी कहानी भारत हमारे की। और का कहे सुनो।
0: स्वागत है स्वागत है।
1: कि रानी पद्मिनी थी चंदा सी गोटी,
0: हाँ
1: खिलजी की नीयत भई हाय खोटी, ज्वाला में कूदी है रानी कहानी भारत
0: भारत हमारे
1: हमारे
0: की। बहुत
1: की।
0: सुंदर बहुत
1: चलो
0: सुंदर
1: आज तुमको सुना मैं कहानी भारत हमारे की।
0: बहुत सुंदर
1: कि सोने की चिड़िया सोजू देश मेरो, सब धर्मन को है जाई में डेरो, बहे गंग जमुना को
0: को
1: पानी
0: पानी भारत।
1: कहानी भारत
0: बहुत
1: हमारे
0: सुंदर बहुत
1: की।
0: सुंदर बहुत सुंदर
1: चलो
0: बहुत सुंदर।
1: आज तुमको
0: सुना
1: सुना
0: मैं
1: मैं
0: कहानी
1: कहानी
0: भारत
1: भारत
0: हमारे की।
1: हमारे की।
0: बहुत सुंदर बहुत
1: कि
0: सुंदर।
1: गौतम महावीर नानक की वाणी, गौतम महावीर नानक की वाणी, राम सिया कान्हा की धरती है धानी,
0: हाँ
1: और देव की यशोदा सी मैया
0: आई हाय
1: कहानी भारत
0: हाँ
1: हमारे
0: बहुत अच्छे
1: की।
0: बहुत बढ़िया
1: चलो
0: बहुत बहुत सुंदर बहुत
1: आज
0: सुंदर।

0: चलो आज
1: की।
0: सुनावे कहानी भारत हमारी की, या सरस काव्य पाठ के साथ। धन्यवाद, बधाई आपको मंजू जी। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ आदरणीय के राजस्थानी साहब से आए और काव्य पाठ शुरू करें। आदरणीय राजस्थानी जी।
2: आभार आदरणीय सभी श्रोतन को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। आजादी हमारे शहीदन की धरोहर है। आज भी जब जब माँ भारती पे कोई संकट आयो है, भारत माँ के लाडले अपने सर्वोच्च बलिदान देवे को हमेशा तैयार रहे।
0: स्वागत
2: तो प्रस्तुत है।
0: स्वागत
2: इकुलो तो लाल जा।

0: छेल छवि लो बाको, मैया को दुलारो लाडू प्यार ते संभारो है।
1: बहुत अच्छा।
0: नजर न जाकू लगे सोए सब भाग जगे, खूब सी बलैया लेके यार तो उतारो है। दुख बाबा भाप जाए करे जा सो कहाँ पे जाए, बड़ो ही संभारे राखो आखिन को तारो है।
1: हाँ
0: धन्य ऐसे मैया बाबा की ओ कब पछतावा, भारती को सौंपो जब देश ने पुकारो
1: बहुत
0: है।
1: अच्छा
0: भारती
1: बहुत
0: को
1: अच्छा।
0: सौंपो जब देश
1: देश ने
0: ने
1: पुकारा है,
0: पुकारो
1: बहुत
0: है।
1: सुंदर।
0: बहना की राखी छोड़े जाने कैसी प्रीत जोरी, मैया ते यू चलो आज मुख गए हो मोड़ के। आखिन को तारो प्यारो बोड़ा पे को एक सारो, बाबा की भी आस प्यास सब गए हो तोड़ के। सीमा से बुलावो आयो संकट में देश पायो, मेहंदी रची थी हाथ हाथ गए हो छोड़ के।
1: हाँ
0: भारती की आरती के थार में चढ़ाए वे शीश, रंग तेरंगा जिया बांको गए हो ओढ़ के।
1: बहुत सुंदर बहुत
0: रंग
1: सुंदर
0: तेरंगा जिया बांको गए हो ओढ़
1: बहुत
0: के।
1: अच्छे भाई।
0: आजादी के दीवाने निकी, आजादी के
1: दीवाने
0: दीवाने
1: की
0: निकी, कमी
1: कमी ना
0: नहीं
1: या देश
0: जा
1: में।
0: देश में, खोजे तो घर घर मिल जावे भगत
1: भगत सिंह
0: सिंह
1: के
0: के
1: वेश
0: वेश
1: में।
0: में।
1: बहुत
0: बहुत
1: अच्छे
0: अच्छे
1: भाई
0: भाई,
1: बहुत
0: बहुत
1: अच्छे
0: बोल।
1: बहुत अच्छे।
0: शहीदन के दम पर आज हमारा तिरंगा आसमान से बातें कर रहे हो है।
1: कैसे कर रहे हो? स्वागत है भाई,
0: कैसे कर रहे हो
1: तो
0: है?
1: बताओ।
0: प्रस्तुत है गीत,
1: स्वागत है।
0: जाने जिया विश्व समूचो मेरो रहे
1: मैं तिरंगा
0: तिरंगा
1: ऊंचो।
0: ऊंचो।
1: बहुत अच्छा भैया बहुत अच्छा।
0: जाने जिया विश्व समूचो मेरो रहे तिरंगा ऊंचो, लहर लहर लहरावे से चल रही शीतल पवन है जैसे।

0: जाऊं।
1: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे।
0: हमको प्राण ते
1: क्या
0: है प्यारो,
1: प्यारो,
0: जग में एक तिरंगा
1: न्यारो, बहुत
0: न्यारो,
1: सुंदर भाई।
0: शान पे।

0: मेरो रहे
1: रहते
0: तिरंगा
1: रंगाऊ
0: ऊं
1: जो।
0: जो,
1: बहुत सुंदर
0: आखिरी
1: है,
0: दो
1: स्वागत
0: पंक्तियां।
1: स्वागत।
0: भले रचे षड्यंत्र जतन जे, करें मानसिक रोगी, आजादी तो गंगा है जे कबहू न मैली
1: जी
0: हो
1: बहुत
0: गई।
1: सुंदर,
0: आजादी
1: बहुत
0: तो
1: अच्छे, बहुत
0: गंगा है
1: अच्छे,
0: जे
1: बहुत
0: कबहू न
1: सुंदर,
0: मैली
1: बहुत
0: हो
1: सुंदर।
0: गई।
1: राजस्थानी साहब,
0: राधे
1: बधाई
0: राधे।
1: आपको सरस काव्य पाठ के लिए। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ आदरणीय सुनीता कुमारी जी से कि तिरंगा को और ऊंचो करत भय, मान बढ़ावत भय, राष्ट्रीय छंदों को प्रस्तुत करें आदरणीय सुनीता कुमारी जी।
2: सभी बहन भाइयों को मेरा नमस्कार। आज़ादी का पर्व, स्वतंत्रता दिवस की सभी को मैं बधाइयाँ दे रही हूँ और अपने कुछ छंदों के माध्यम से
1: स्वागत स्वागत
2: तिरंगा को मान भी रखने की कोशिश कर रही हूँ।
1: स्वागत स्वागत।
2: सुनियो, आज़ादी को नीको पर्व है या नूटो ही है गर्व,
1: वाह
2: फर
1: वाह,
2: फर फहराए कहे रो तिरंगा है।
1: बहुत
2: फर
1: सुंदर भाई, बहुत सुंदर।
2: फर फहराए कहे रो तिरंगा है, करे बलिदान वीर जीवन अमर कियो, खुशियों से मन सब करे गए चंगा
1: बहुत
2: है।
1: सुंदर।
2: वंदे मातरम गीत गावे सब हिले मेले,
1: आए
2: वंदे मातरम गीत गावे सब हिले मेले, दिखे ये कथा को रूप रंगो बिरंगा है।
1: आए, क्या
2: रहे
1: कह रहे हो,
2: सब
1: क्या कह रहे हो,
2: संग
1: बहुत अच्छे
2: संग,
1: बहुत अच्छे
2: रहे
1: बहुत
2: सभी
1: अच्छे।
2: संग संग भारती के आंगन में,
1: बहुत
2: यसे मिटाए सब नफरती दंगा है।
1: सुंदर,
2: और मैं आगे भी यही प्रयास करूंगी कि हमारे देश का
1: स्वागत
2: ये तिरंगा हमेशा अमर रहे, कि
1: स्वागत।
2: सरहद की सुरक्षा में गवाए जिन प्राण, भारती के ऐसे वीर पूतों को नमन है,
1: हाँ।
2: मन को लुभावत।

0: महके जाके सौरव असो राष्ट्रीय चमन है। कर दिन सार देह मात्र भूमि ने हमाए, भारत की माटी बीच भय जो रमन है। सुनीता की लेखनी की बस यही अभिलाषा, लिख लेके बारु दशरथ
1: बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर,
0: लिख लेके बारु दशरथ
1: सुमन, लिख लेके बारु दशरथ।
0: और जैसो के हमारा देश देख भी मुहत सुंदर लगे है,
1: स्वागत है।
0: तो मैं उस पर भी चार पंक्तियां पढ़ने को प्रयास करूँ। सिंधु नदी दीप नग भरते उफान रग, ऐसो निको रूप नित नैन सुनिहारू। ऐसो निको रूप नित नैन सुनिहारू में, और ऊंची ऊंची चोटे न से देवदार चीड़न की, मीठी मीठी बातें सुने निज ही हारू में। मीठी मीठी बातें सुने निज ही हारू में, के मनोहारी रूप देखू एकता को भिन्नता में, मेरा भाव देश सब मन ते निकारू में।
1: क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: गाथाएं भरी रहे सुनीता मन, माता भारती की नित्य
1: आरती उतारू में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सुनीता जी, बहुत अच्छा।
0: आरती उतारू में,
1: बहुत सुंदर।
0: और अंतिम छंद में, आओ मिले के उठाए हाथ में तिरंगा, आज आजादी को ताज सिर रखी हो सजाए के।
1: बहुत अच्छा।
0: खुशियां मनाए वैर दिल से निकारे दियो, आपसी में लाभ मेल रखी हो बचाए। तोड़ियो न एकता की अपनी पुरानी डर, मन निज वतन को रखियो बचाए के। जनगण मन धुन सदा रहे जिंदाबाद, दुनिया के आगे रूप रखो चमकाए।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: आगे रूप रखो चमकाए।
1: बधाई सुनीता जी सरस काव्य पाठ के लिए। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ आदरणीय भाई सुनील जी से कि आए और अपना काव्य पाठ शुरू करें।
2: सबन को नमस्कार। एक मुक्तक के माध्यम से मैं बीरन को नमन कर रहा हूँ।

0: सरहद पे
1: बहुत अच्छे भैया।
0: मौत से रोज लड़े निर्भय वो वीर सिपाही सरहद पे
1: बहुत सुंदर।
0: सुखी।

0: सरहद पे।
1: वाह क्या कहने हैं,
2: जाग
1: बहुत
2: रहे
1: अच्छा,
2: हो
1: जिंदाबाद।
2: हे अचल पहरुआ ले अंगड़ाई सरहद पे। और या आजादी है पाएवे, कितने वीरन ने प्राण गमाए हैं, या मुक्तक के माध्यम से मैं कहवे की
1: स्वागत
2: कोशिश कर रहा
1: स्वागत
2: हूँ।
1: स्वागत स्वागत।
2: या आजादी के कारण भी रन ने प्राण गमाए
1: बहुत
2: हैं,
1: सुंदर।
2: हंसे हंसे फांसी फंदा चूमे शीश कबहू न
1: बहुत
2: झुकाए
1: अच्छे, बहुत
2: हैं।
1: बढ़िया।
2: आवो मिलके बंधन
1: बंद
2: कर ले देश के अमर शहीदन कूं, जिनके बलिदानन ते हमने
1: हाय
2: जे उजियारे
1: पाए हैं। वाह
2: पाए
1: वाह वाह वाह,
2: हैं,
1: बहुत अच्छे, बहुत
2: जिनके
1: सुंदर।
2: बलिदानन ते हमने जे
1: उजियारों पर
2: उजियारे
1: पाए हैं,
2: पाए
1: बहुत सुंदर।
2: हैं। और अगला मुक्तक निवेदन कर रहा हूं।
1: स्वागत है।
2: का
1: क्या

0: पंथ पे करें गमन,
1: वाह बहुत
0: ताई
1: बढ़िया।
0: खातिर मिलके हम संघर्ष पंथ पे करें
1: बहुत बढ़िया,
0: गमन।
1: बहुत बढ़िया।
0: और ये अंतिम मुक्तक फिर
1: स्वागत
0: एक गीत निवेदन करूंगा।
1: स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
0: बैर बिसानल दूर करो सब,
1: आए आए बैर
0: प्रीति
1: बिसाने।
0: पुष्प बरसाई चलो। बैर
1: बहुत सही है।
0: बिसानल दूर करो सब, प्रीति पुष्प बरसाई चलो।
1: बहुत अच्छे गीत।
0: हारन

0: हस हस सब कर देउ अर्पण, देश धर्म हित तन मन धन, हस हस सब कर देउ अर्पण, रहे अखंड भूमि भारत की ऐसी रस्म निभाई चलो, रहे अखंड भूमि भारत की ऐसी रस्म निभाई चलो। और एक गीत और निवेदन कर रहा हूँ।
1: स्वागत है, स्वागत है।
0: शोक को सागर बहुत देखो हमारे देश ने,
1: आई आई।

0: वाह
1: भूल मत ऊसरु बहुत देखो हमारे देश ने,
0: बहुत अच्छे अच्छे
1: भूल मत ऊसर बहुत देखो हमारे देश
0: बहुत
1: ने,
0: सुंदर।
1: मुश्किल

0: देशा ने।
1: बहुत सुंदर, बहुत
0: सुंदर
1: सुंदर
0: सुंदर,
1: स्वामी जी, बहुत
0: वाह
1: अच्छा,
0: वाह।
1: बहुत
0: और अब
1: बधाई।
0: तक जो हमें काव्य पाठ कराए रहे, मैं अब उन्हीं को आवाज दे रहा हूं कि डॉक्टर सोहनलाल शीतल जी आमे और अपनों काव्य पाठ करें। डॉक्टर सोहनलाल शीतल जी,
1: धन्यवाद सुनील जी, राष्ट्र कवि गोष्ठी को अंतिम रूप देते है, क्योंकि अभी कोशिश करिए
0: स्वागत है।
1: कि वेदना भारती की तार तार हो जावे, वेदना भारती की तार तार हो जावे, और मझधार हूँ हंसतो कगार है जावे,
0: हाँ।
1: और मझधार हूँ हंसतो कगार है जावे, आओ मिलके यारो खिलाए गुल कोई ऐसो, आओ मिलके यारो खिलाए गुल कोई ऐसो, वतन की बगिया में फिरते बाहर है जावे, वतन की
0: वाह
1: बगिया
0: बहुत
1: में
0: बढ़िया,
1: फिरते बाहर है जावे। और यही बात को आगे बढ़ावा तो भाई कह भी कुछ करिए कि प्रेम प्रीत सो हम सब मिलके, प्रेम प्रीत सो हम सब मिलके मन में सुमन खिलावेंगे,
0: जरूर
1: प्रेम
0: बड़े
1: प्रीत सो हम सब मिलके मन में सुमन खिलावेंगे,
0: क्या
1: स्वतंत्रता के पावन पर्व को हम हंस हंस के मनावेंगे,
0: बात है,
1: स्वतंत्रता के पावन पर्व को हम हंस हंस के
0: वाह
1: मनावेंगे,
0: वाह वाह वाह,
1: बैर
0: बहुत
1: भाव
0: सुंदर,
1: दोष सवै बिसराय के,
0: वाह
1: बैर भाव दोष सवै बिसराय के, राग अनुराग गूंजे चारों ओर,
0: अच्छा
1: बैर भाव दोष सवै बिसराय के, राग अनुराग गूंजे चहु ओर, जात पांत की दीवार नकू मिलके आज गिरावेंगे,
0: हाँ,
1: जात
0: जात पात
1: पांत की
0: की बढ़िया
1: दीवार
0: सुंदर,
1: नकू
0: बढ़िया सुंदर,
1: मिलके आज गिरावेंगे, और प्रेम प्रीत सो हम सब मिलके मन में सुमन खिलावेंगे,
0: बहुत बढ़िया,
1: स्वतंत्रता के पावन पर्व को हंस हंस के
0: वाह
1: मनावेंगे,
0: वाह वाह वाह
1: स्वतंत्रता
0: वाह,
1: के
0: बहुत
1: पावन पर्व
0: अच्छा,
1: को हम हंस हंस के मनावेंगे, जिन राहन पे
0: हाँ।

0: जिन राहन पे चल के अपनो सीस सपूत गए, जिन राहन पे चल के अपनो सीस सपूत चढ़ाए गए, उन्हीं कदमन पे चल के हम भारत को मान बढ़ावेंगे। जिन राहन पे चल के अपनो सीस सपूत चढ़ाए गए, उन्हीं कदमन पे चल के हम भारत को मान बढ़ावेंगे। ऊंच नीच की रीत नहीं चलने देंगे, और ऊंच नीच की रीत नहीं चलने देंगे। मानवता के दीप जराए के मनसो मन को मिलावेंगे, मानवता के दीप जराए के मनसो मन को मिलावेंगे, और प्रेम प्रीत सो हम सब मिलके मन में सुमन खिलावेंगे। कि अमर के सिगरे, अमर के सिगरे चंदा तारे तोड़ धरा पे लावें, कि अमर के सिगरे चंदा तारे तोड़ धरा पे लावें, भारत माँ की चुनरिया में नग की तरह सजावेंगे, भारत माँ की चुनरिया में नग की तरह सजावेंगे, और स्वतंत्रता के पावन पर्व को हंस हंस के हम मनावेंगे। कि लूट फूट के बीज, कि लूट फूट के बीज जो बोवे स्वार्थ में मगन सदा, लूट फूट के बीज जो बोवे स्वार्थ में मगन सदा, एक ही माँ के लाल है सब ही हम जे उनको समझावेंगे, एक ही माँ के लाल हैं सब ही हम उनको समझावेंगे, और स्वतंत्रता के पावन पर्व को हम हंस हंस के मनावेंगे। और भारत भूखी छवि तो प्रेम पगी और वीर प्रसूति सोहन, लाज तरंगे की रख के हम जग में नाम कमाएंगे, लाज तरंगे की रख के हम जग में नाम कमाएंगे। और यही क्रम में एक छोटी सी गीत का और निवेदन कर रहे हूँ, झुकवे की बात कर, झुकवे की बात कर न झुकाएवे की बात कर, झुकवे की बात कर न झुकाएवे की बात कर, जो झुक रहे हैं उन्हें उठाएवे की बात कर।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: झुकवे की बात कर न झुकाएवे की बात कर, जो झुक रहे हैं उन्हें उठाएवे की बात कर। और हल्ला जात पात को बहुत है रहो चारों ओर, हल्ला जात पात को है रहो चारों ओर, ऐसे समय में प्रेम गीत गाएवे की बात कर। और कैसो जुलम होए, कैसो जुलम होए, देवे को जवाब सही सही, हाथन में लेखनी उठाएवे की बात कर। और झुकवे की बात कर न झुकाएवे की बात कर, जो झुक रहे उन्हें उठाएवे की बात कर। चल रही हैं नफरतों की आंधियां जहां में अब, वहां एक प्रेम दीप जलाएवे की बात कर, वहां एक प्रेम दीप जलाएवे की बात कर। झुकवे की बात कर न झुकाएवे की बात कर, और जो झुक रहे हैं उन्हें उठाएवे की बात कर। सहज में ही मिटेंगे सिगरे कष्ट तेरे, सहज में ही मिटेंगे सवरे कष्ट तेरे, दूसरे नके काजू बनाएवे की बात कर, दूसरे नके काजू बनाएवे की बात कर, न झुकवे की बात कर न झुकाएवे की बात कर, जो झुक रहे हैं उन्हें उठाएवे की बात कर। और सोहन जो मानस है भाग्यहीन जगमाही, सोहन जो मानस है भाग्यहीन जगमाही, उनके भाग्य बनाएवे की बात कर, न झुकवे की बात कर, न झुकाएवे की बात कर, और झुक रहे हैं उन्हें उठाएवे की बात कर। और मैं इन्हीं पंक्तियों के संग आज के कवि गोष्ठी को यहीं विराम दे रहा हूं। नमस्कार।
2: अभी श्रोता 15 अगस्त पर विशेष ब्रज कवि गोष्ठी सुन रहे हैं। यहाँ में प्रतिभागी कवि है मंजू शाक्य, डॉक्टर सोहन लाल शीतल, सुनीता कुमारी, सुनील कुमार और के राजस्थानी। तो श्रोताओं, या के संग ही आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए है। मुकु यानी के वंदना को और मोही यानी श्रुतिपुरी को देव अनुमति। राधे राधे, राधे। कार्यक्रम प्रस्तुत करता विवेक कुमार तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे ब्रजमाधुरी कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दिन के 3:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं नाटक।
1: आइए सुनते हैं नाटक हुल हुल संथाल। ये नाटक स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू और कान्हू मुर्मू पर आधारित है। लेखक योगेश अग्रवाल, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।
2: बुरा होगा, गरीब की हाय लगेगी इनको। मेरी जमीन के टुकड़े से कितना अमीर हो जाएगा। ले ले ले ले मेरी जमीन, ले ले, बना ले अपना महल मेरी जमीन से कमा के धोखे पाज कहीं का।
3: ये तो चांद है, कहा हुआ इसे, काहे इतना बेचैन सा आ रहा है।
4: चांद बेटा, ओ चांद बेटा, अरे कहा हुआ रे, कहा सरपट भागा जा रहा है। अरे दिल्ली की ट्रेन छूट रही है का?

0: अरे तुम लोग तो रो रहे हो।
1: अरे का हुआ, कछु बताएगा भी चांद?
2: जय जोहार बाबा।
1: जय जोहार, आओ बैठो और अब बताओ कि हुआ का है।
3: बाबा, मेरी जमीन मेरे पड़ोसी के दोस्त ने हथिया ली। मैंने उसे 3 साल के लिए बटाई पर दी थी, पर उसने मेरे सामने छोटे कागज धर दिए कि ये जमीन मैंने उसे बटाई पर नहीं दी थी, बल्कि मैंने उसे बेची थी। पर बाबा, बाबा भगवान बोगा की कसम, मैं क्यों बेचूंगा? मैं अपनी जमीन क्यों बेचूंगा? अपने बाप दादा की जमीन को मैं क्यों बेचूंगा? मैं तो सच्ची उसे बटाई पर ही देकर गया था।
2: बाबा आप ही बताओ, इसके अलावा हमारे पास यही का, हम भी धरती गई तो फिर इस जिंदगी का क्या फायदा बाबा?
3: बाबा, बाबा यह हमारी जिंदगी लूट रही है और तुम हंस रहे हो। हमारी बात से हम धरती ना थी तो रोका क्यों था? चल भैरवी, चल, इस गांव के टिक्कू क्या, अपने क्या, सब दुश्मन हैं, हंसते हैं हम पर जैसे हमने उसे लूट लिया हो। अब हम मरे या इस गांव से जाएं, ना हमें रोकना ना हमें टोकना।
1: अरे चांद, अगर ये गुस्सा तूने उस बाहरी आदमी यानी दिक्कू को दिखाया होता तो आज तुझे रोना ना पड़ता।
3: बाबा, तुमको पता भी है कि वो कितना शक्तिशाली है। अरे मैं ठहरा गरीब किसान, उसके पास पैसा है, अपने लोग हैं, वो तो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है ना बाबा। हमें मरवा नहीं सकता है। और मेरी जवान बहन कुछ ऊंच नीच हो गई तो मेरा क्या होगा बाबा?
1: मत भूल चांद कि तू एक संथाल है जिसकी रगों में सिद्धू और कान्हू का खून बहता है, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, जिन्होंने अपने साथियों को मालगुजारी के बढ़ते दामों के आतंक से, जमींदार दरोगा और महाजनों के अत्याचार से मुक्त कराया था। तेरी रगों में उनका खून बहता है। उन्होंने संथालों को एकजुट करके हूल हूल संथाल कर दिया था और तू रोकर आ गया।
2: हूल हूल यानी विद्रोह। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह तो आसान है, पर उस दिक्कू के खिलाफ हम कैसे विद्रोह कर सकते हैं बाबा? हम दोनों के पास है ही क्या?
1: हमारे खून में गलत काम के खिलाफ आवाज उठाने का जज्बा है बेटी। अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम दोनों सुनो सिद्धू और कान्हू की कहानी, फिर बताना कि गलत बात पर तुम्हारा खून खौलेगा या नहीं। बैठ बेटी, बैठ और शांति से ये कहानी सुनो। बात है कोई 1815 की, जब सिद्धू मुर्मू का जन्म हुआ था और 1820 में कान्हू मुर्मू पैदा हुआ था। इनके और दो भाई भी थे। अरे एक तो तेरा हमनाम ही था चांद, और एक भैरव।
2: अच्छा,
1: दो बहनें भी थीं, फूलो और झानो मुर्मू। ठीक ठाक परिवार था, हंसते खेलते काम करते गाते गुनगुनाते जिंदगी कट रही थी। पर अंग्रेजों को कहां हंसता खेलता कोई गांव पसंद आना था। उन्होंने इनके गांव भोगनाडीह की जमीन पर मालगुजारी लगा दी।
3: अच्छा,
1: जबकि अंग्रेजों ने जमीन देते वक्त ऐसी कोई शर्त ना रखी थी।
4: भोगनाडीह गांव के सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि जो अंग्रेज सरकार ने आप लोगों को मुफ्त में जमीन दिया हुआ था, उस पर अब आप सभी को मालगुजारी देना पड़ेगा। समय पर मालगुजारी ना देने पर सजा भी हो सकता है और जुर्माना भी लग सकता है।
5: ये क्या बात है?
6: अरे ये तो गजब हो रहा है। जमीन देते हुए तो ये बात ना कही थी कि जमीन पर माल गुजारी देना पड़ेगा।
2: अरे इन लोगों में कोई दया ममता तो होता नहीं है। हाँ। जिसकी जमीन चाहिए हथियाली, एक बार

0: बिना सोचा इन गोरों ने कि इतनी मुश्किल से हमें ऐसी उपजाऊ जमीन मिली थी जिसे दिन रात एक करके हमने रहने बैठने और खेती के लायक बनाया।
1: कैसे जिएंगे हमारे बच्चे, कैसे खाएंगे पिएंगे?
2: हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम आपकी जगह नहीं रहेंगे, मर जाएंगे।
3: जो माल गुजारी 1836-37 में 2611 थी वो 1854-55 तक 58,033 रुपए हो गई थी।
4: हाँ, कह रहे हो।
3: और क्या, एक गरीब किसान के लिए ये देना असंभव हो रहा था। तब तक सिद्धू और कानू भी जवान हो चुके थे। उनके कानों में ये बात पड़ी तो उन्हें ये गवारा ना हुआ कि उनके बाप दादाओं ने जी तोड़ मेहनत करके पूरे जंगल को साफ करके खेती योग्य बनाया। इतना लाभ नहीं हो रहा था जितना मालगुजारी देनी पड़ रही थी।
4: तो बिल्कुल सही किया।
3: तो सिद्धू और कान्हू ने गांव में एक सभा बुलाई और ऐलान किया।
5: भाइयों बहनों, आज इस सभा को बुलाने का कारण ये है कि अंग्रेजों का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है।
6: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
5: हमारे बाप दादाओं को उन्होंने छोटा सा जंगल दिया था और उन्हीं की मेहनत से ये जंगल इतना बड़ा बन पाया। आज हम उस पर खेती करके अपना अपने परिवार का पेट भरते हैं। इन अंग्रेजों से कोई मदद नहीं लेते, ऊपर से माल गुजारी भी देते हैं।
6: सही बात है, बिल्कुल सही बात है,
5: सही कह रहे हैं।
6: भाइयों और बहनों, कितनी बदकिस्मती है हमारी कि अंग्रेज हमारी धरती पर आकर हमें ही हमारी धरती बेचता है।
7: बिल्कुल सही बात हो रही है। मतलब
6: और हम कुछ नहीं कहते, मेहनत हम करते हैं, वो माल गुजारी के मनमाने दाम लेते हैं।
7: बिल्कुल नहीं चलेगा।
6: सही कह रहे हैं। हम फिर भी कुछ नहीं कहते, वो हम पर ही एहसान जताते हैं कि हमने तुम्हें जमीन दी है। हम तब भी कुछ नहीं कहते, पर उन्होंने माल गुजारी का दाम इतना कर दिया है कि वो देना अब हमारे बस की बात नहीं है। साल का 58,033 रुपया कहाँ से देंगे हम?
7: कहाँ से देंगे?
6: अंग्रेज सरकार की माल गुजारी का भर एक संथाल विरोध करेगा,
7: विरोध करेगा,
6: विरोध करेगा।
5: हम इनके अत्याचार को अब और नहीं सहेंगे,
7: नहीं सहेंगे,
5: नहीं सहेंगे। हम इन अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाते हैं।
6: हूल हूल संथाल,
7: हूल हूल संथाल,
6: हूल हूल संथाल।
4: फिर क्या हुआ?
3: होना कहा था बेटा, इतने समय से हो रहे अत्याचार को कोई कितना सहेगा। अरे ना भी किसी में हिम्मत हो पर वो मरते मरते भी बगावत जरूर करेगा। ये थी संथालों की भावना। अंग्रेजों को क्या पता था कि जिन लोगों को वो कुछ नहीं समझ रहे वही लोग उनको नाकों चने चबवा देंगे।
4: ये बात,
3: अंग्रेजों ने संथालों से माल गुजारी वसूल करने के लिए भागलपुर में एक अंग्रेज कलेक्टर को बहाल किया और उसकी मदद के लिए कुछ तहसीलदार भी नियुक्त कर दिए। वो लोग थे तो अपने, पर थे अंग्रेजों से भी ज्यादा बदनीयत, लालची और घूसखोर, और संथालों के साथ अंग्रेजों से भी बदतर व्यवहार करते थे। संथाल गरीब तो थे ही, तो हर काज के लिए उन्हें महाजन के आगे हाथ फैलाने पड़ते। दुष्ट महाजन 2 रुपया देता और वसूल मरने के बाद तक करता रहता, और इतना पैसा लेने के बाद भी फौजदारी का मुकदमा कर देता कि इन्होंने पैसा दिया ही नहीं। इन बेचारे गरीब संथाल किसानों को जंगीपुर जो बंगाल में है उतनी दूर जाना पड़ता। एक तो गरीब, ऊपर से झूठे मुकदमे, और उनका भी परिणाम संथालों के हक में नहीं होता।
4: फिर क्या हुआ बाबा?
3: संथालों की जिंदगी महाजनों से कचहरी और कचहरी से पीछा छुड़ाने के लिए फिर महाजनों के आगे हाथ फैला देती। यानी कुल मिलाकर उनकी जिंदगी एक गेंद की तरह थी जिसे कोई भी लात मार देता था। एक घटना ने संथालों की सहन शक्ति को चुनौती दे दी।
8: आज का पूर्वी

0: में रेल लाइन बिछाई जा रही है।
1: रेल लाइन बिछाई जा रही है।
0: हाँ, मजदूरों की जरूरत है। औरत मर्द दोनों की आवश्यकता है।
2: हमें नौकरी मिलेगी।
0: जल्दी पहुँचे, अपना नाम
3: लिखाए। बहुत हो रही है, बहुत बहुत अच्छी खबर है। तो
4: अरे रो क्यों रही हो?
5: मैं वो काम नहीं करूंगी।
1: काहे?
5: उस गोरे ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की।
1: कौन था?
5: मेरे आदमी ने विरोध किया तो उसने उसको खाई में फेंक दिया।
1: बात कर रहे हो?
5: अब क्या होगा मेरे बच्चों का? हमारी कोई सुनने वाला नहीं।
4: चलो सिद्धू, कानू, चांदो, भैरव के पास चलते हैं।
1: सही बात,
4: कुछ तो करना होगा वरना मरना होगा।
1: सही बात है।
4: चलो चलो।
6: अरे सिद्धू, कानू तो यही चले आ रहे हैं। सिद्धू देखो तो।
7: हमें पता है रमालू, हम वहीं से होके आ रहे हैं। हर औरत की यही रामकथा है वहाँ। देखो साथियों, अब पानी सिर से गुजर चुका है। अगर हमारी बहन माँ बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर हमारे होने का क्या फायदा?
6: हमें अंग्रेजों को सबक सिखाना होगा।
8: सबक नहीं साथियों, इनको अब जड़ से उखाड़ना होगा।
9: जड़ से उखाड़ना होगा।
4: सिद्धू, कान्हू, आसान है उन्हें उखाड़ फेंकना क्या? उनके पास सेना है, आधुनिक हथियार है। हमारे पास चार पैसे नहीं है अपनी गर्दन महाजनों से छुड़वाने के लिए, और तुम अंग्रेजों के खिलाफ फूल की तैयारी कर रहे हो।
7: आप सब बिल्कुल सही हैं, पर जब हमारे भगवान मरांग गुरु और जाहिर आयो निर्देश दिया है कि स्वतंत्रता के संदेश को देश के कोने कोने में फैला दो, ताकि सभी लोग भावी संकट का मुकाबला करने को तैयार हो जाएं, तभी तुम लोग पूर्व की भांति स्वतंत्र रह सकोगे।
8: तो हम आज ऐलान करते हैं, हम सब आज से और इसी वक्त से स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं।
6: और हम घोषणा करते हैं कि सिद्धू कान्हू मुर्मू हमारे सूबा होंगे, यानी राजा होंगे, भैरव चांदो सेनापति।
8: हम घोषणा करते हैं कि चूंकि अब हम आजाद हैं, तो हमारे ऊपर अंग्रेजों का कोई भी सरदार नहीं होगा, ना ही कोई हाकिम और ना ही कोई थानेदार। कोई नहीं होगा। और ना कोई कर देना होगा, ना किसी मालगुजारी का भार हम पर होगा। अब अपना, केवल अपना संथाल राज स्थापित होगा।
7: अब हम प्रति भैंस के हल पर चार आना और बैल के हल पर दो आना अपना माल गुजारी दिया करेंगे, और कर्ज का सूद भी रुपए में सिर्फ एक पैसा प्रतिवर्ष देना होगा।
10: साहेब, साहेब।
6: अरे क्या हो गया?
10: अरे गजब हो गया, गजब हो गया। सांथालों ने हमारे खिलाफ विद्रोह कर दिया है।
6: विद्रोह कर दिया?
10: हमारे थाने की ओर बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे साथियों को छोड़ना होगा वरना अच्छा नहीं होगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि जमींदार महाजन और अंग्रेजी सरकार का नाश हो।
6: ओ अच्छा, इनकी इतनी हिम्मत? ये लोग ना पेट में रोटी ना तन पे लगोटी, ये मेरी सत्ता को चुनौती देंगे। दिखाता हूँ इन्हें इनकी औकात। बताओ तो, अभी तक जो हमारे आगे सिर झुकाकर बात करते थे, उनमें इतनी साहस आ गया कि हमारा नाश करने के लिए आवाज उठाएं? कौन है इनका नेता?
11: साहब, नेता नहीं, इनका सूबा। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके अपना राजा चुन लिया है। सिद्धू कान्हू मुर्मू।
6: क्या अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया इन्होंने? वाह भाई वाह, जिन अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, उनके राज्य में इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वाह भाई, मिलना पड़ेगा इन एक फसली के राजाओं से। इन्हें तुरंत पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो।
10: जी साहब।
12: फिर क्या हुआ बाबा? सिद्धू और कान्हू को मार दिया थानेदार ने?
13: अरे पगली, संथालों ने उस थाने

0: जमींदार पर ऐसे तीर बरसाए कि वो वहीं ढेर हो गया। हूल हूल संथाल,
1: हूल हूल संथाल,
0: ये कहकर उन्होंने अपने विद्रोह का ऐलान कर दिया। अंग्रेजों ने संथालों को यूं ही समझा, सोचा कि इनको तो वो एक उंगली से दबा देंगे। इनके पास हिम्मत थी,

0: आस हिम्मत थी, एकता थी, और उन्होंने अपने बर्छे भाले और तीरों से फुदकपुर गांव और साहेबगंज में ऐसा आतंक मचाया कि इनके तीर कमानों के आगे अंग्रेजों की बंदूकें भी मात खा गईं।
1: अच्छा,
2: शाबाश शाबाश मेरे जाबाज लड़ाको, हमें अपनी जमीन खाली करानी होगी इन अंग्रेजों से। करो या मरो, अंग्रेजों हमारी जमीन छोड़ो।
3: करो या मरो,
4: अंग्रेजों हमारी जमीन छोड़ो।
5: अंग्रेजों हमारी जमीन छोड़ो। अंग्रेजों हमारी जमीन छोड़ो।
6: अंग्रेजों हमारी जमीन छोड़ो।
7: शांत, कल सिद्धू साहेबगंज वहां धावा बोलेंगे।
2: इन्होंने हमारे साथ, हमारे देश के साथ बहुत बुरा किया है, बस ये याद रखो। अपने तीरों को पैना करो और बर्छे भाले तेज करके रखो।
7: हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे रास्ते और कठिन होते जाएंगे। तो चांदो और भैरो, तुम अपने साथियों को घर घर गांव गांव भेजो हमारे भगवान के इस संदेश के साथ कि उनका हुक्म है कि अंग्रेजों से अपनी माटी आजाद करानी होगी।
8: माटी आजाद करानी होगी।
7: उसके लिए हर एक संथाल को अपनी कुर्बानी देनी होगी। हर संथाल अब घर में नहीं, युद्ध के क्षेत्र में दिखाई देना चाहिए। युद्ध के क्षेत्र में दिखाई देना चाहिए।
0: संथाल जिनके पास ना अच्छे हथियार ना कोई अच्छी रणनीति, पर था तो सिर्फ हौसला और अपने भाइयों का साथ।
9: साहिबगंज में क्या हुआ बाबा?
10: बाबा
0: अरे भैरवी, होना क्या था? सिद्धू और कान्हू मुर्मू का नाम सुनते ही अंग्रेज नावों में सवार होकर नदी पार पहुंचने की तैयारी में थे।
9: अच्छा?
0: पर संथाली सेना ने नदी की ओर अपने तीरों की ऐसी बाढ़ छोड़ी, ऐसी लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों की कई नौकाएं नदी में ही डूब गईं।
9: बाबा, ये सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है ना कि अंग्रेजों के पास बंदूकें थी, पर फिर भी वो सिद्धू और कान्हू मुर्मू से डर कर भाग रहे थे। सच में ये सोचकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि संथालों ने अत्याचार और शोषण के विरुद्ध ही नहीं, अपनी भी आजादी का बिगुल बजा दिया था।
0: अब अंग्रेजों को पता चल गया था कि जिनके तन पर कपड़ा नहीं, पेट में अन्न नहीं, उनसे मुकाबला जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पर बेटी, अंग्रेज तो अंग्रेज थे, वो अपने पैंतरों और चालबाजी से कहां बाज आने वाले थे।
7: साथियों, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए हैं आप लोगों ने। अब वो और कड़ी योजना बना रहे होंगे हमारे विरुद्ध। हमें खबर मिली है कि अंग्रेज कप्तान फगान के अधीन सरकार ने एक फौज की टुकड़ी भेजी है जिसमें 500 सैनिक हैं। बेलापुर पहुंचने वाली इस टुकड़ी में पहाड़िया सैनिक भी हैं।
11: कोनो चिंता की बात नहीं है भैया।
2: तो हमारी रणनीति भी यही रहेगी कि हम भी पहाड़िया युद्ध करेंगे जिसमें ये अंग्रेज सैनिक हमारे सामने कुछ समय भी नहीं टिक सकेंगे। चलो साथियों, मरो या मारो, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो।
12: अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो।
13: अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो।
14: अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो।
15: अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो।
2: हमें दुख है कि इस युद्ध में हमारे बहुत से कुशल नेता मारे गए हैं, पर खुशी की बात यह है कि अंचल भागलपुर कहलगांव परगना के राजमहल तृतीय से रानीगंज तक के हम स्वामी हैं।
16: हमारा अधिपत्य है वहां पर।
2: और यहां रहते हुए हमें 15 दिन हो चुके हैं, तो अब हमें पाकुड़ और महेशपुर की ओर कूच करना होगा।
9: वहां भी हमारे संथाल विजयी रहे बाबा।
0: हाँ बिटिया, अंग्रेज उनके आगे

0: आगे टिक ही नहीं पाए।
1: अच्छा।
0: हाँ, उनसे बचने के लिए अंग्रेजों ने 24 घंटों में एक मार्टेला टावर खड़ा किया।
1: हाँ?
0: जिसमें छोटी छोटी खिड़कियां बना दी गई और उसमें से उन्होंने गोलियां चलाई। वैसे यहाँ हार तो नहीं हुई, पर काफी साथियों के मारे जाने के कारण सिद्धू और कान्हू मुर्मू थोड़े कमजोर जरूर पड़ गए थे। ये बात होगी कोई 15 जुलाई 1855 की।
1: अच्छा।
0: सिद्धू अपनी बची खुची सेना लेकर बढ़ैत आ गया, जहां उसने नए सिरे से अपनी सेना का गठन किया।
1: अच्छा।
0: और जानते हो, यहाँ बाहरी लोगों या दिक्कू ने भी उसका साथ दिया।
1: अच्छा। हाँ।
0: पर अब किस्मत उसका साथ छोड़ रही थी।
2: क्यों बाबा?
0: क्योंकि बरसात होने पर जंगलों में युद्ध करना काफी मुश्किल था और संथाल सैनिक भी काफी मारे जा चुके थे।
3: चिंता मत कर सिद्धू, बढ़ैत हाथ से गया तो क्या हुआ, हम फिर से जीत लेंगे।
2: कान्हू, कहीं हमारे साथी हिम्मत ना हार बैठे, क्योंकि अंग्रेजों ने एक महीने के अंदर अंदर दामिनी को संस्थाली क्षेत्र खाली करवा लिया है।
3: पर अभी तकरीबन 30,000 संथाली हैं, जो अपने बर्छे तीर कमान से लैस हैं, उन्हें दबाना आसान नहीं है। अंग्रेज सरकार बहुत चिंता में है।
2: तो फिर वो जरूर कोई चाल चलेगी, उनके पास धोखे के अलावा कुछ नहीं है, और देखना वो धोखे को अपना हथियार बनाएगी। मेरे भाई सतर्क रहना।
4: सुबह सुबह अंग्रेजों ने गांव गांव में ये ऐलान करना शुरू कर दिया है कि अगर संथालों ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया है, लूटपाट की है, लोगों के प्राण लिए हैं और सरकारी फौजों का सामना किया है, ये उनकी मूर्खता है। पर अगर वो इसे अपनी गलती समझकर वापस आना चाहते हैं और मिलजुल कर रहना चाहते हैं, तो उन्हें क्षमा कर दिया जाएगा, पर इनके नेताओं को नहीं, जिन्होंने आम सीधे साधे संथालों को भड़काया और रण क्षेत्र में बिना सोचे समझे उतार दिया। ऐसे नेताओं की छानबीन करके उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो सरकार आपसे अनुरोध करती है कि आप लोग समर्पण कर दे। अगर इस घोषणा के बावजूद भी कोई खड़ा हुआ तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।
2: हाँ, ये सब धोखा है, ये सब धोखा है, हम नहीं जाएंगे, हम जानते हैं सब धोखा है।
5: अच्छी खबर लाई हो बहन जानो, तो साथियों तैयार हो जाएं, अंग्रेज सरकार को एक बार फिर मुंह की खिलाने का वक्त आ गया है।
3: वक्त आ गया है।
5: हमारे दो भाइयों चांद और भैरव का बदला भी अभी बाकी है, जो बहराइच में अंग्रेजों के लड़ते हुए शहीद हो गए।
3: करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो,
6: अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
3: हमें मालूम है, हमें मालूम है कि अंग्रेजी सरकार हमारे खिलाफ हर तरह की ज्यादती करेगी, पर हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लड़ेंगे। हूल हूल सरकार, हूल हूल सरकार, हूल हूल सरकार।
4: यानी सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू इन अंग्रेजों से जीत गए?
0: गैरों से तो लड़के जीता जा सकता है, पर जो अपने होते हैं ना, उनसे कोई नहीं जीत सकता।
4: क्या मतलब बाबा?
0: मतलब ये बेटा कि सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने अंग्रेजों को तो नाकों चने चबवा दिए, उन्हें बता दिया कि तुम्हारी बंदूकें हमारे तीर कमानों और बर्छों का मुकाबला नहीं कर सकती। पर अपनों के बीच में किसी धोखेबाज को ढूंढ पाने के लिए आज तक ना तो कोई हथियार या औजार बना, ना कोई मशीन बनी कि दगाबाज का पता बता दे। तो कर दी किसी अपने ने मुखबिरी।
4: अच्छा।
0: अंग्रेजों के कलेजे को ठंडक पहुंची, क्योंकि वो जानते थे कि इन संथालों के राजा पर ईमानदारी से कब्जा तो नहीं पाया जा सकता। तो बेईमान लोगों ने बेईमान को ढूंढा

0: और लालच देकर मिला लिया अपनी तरफ। और उसने संथालों के वीर जांबाजों की खबर दे दी। अंग्रेजों ने अपनी दोगली बहादुरी दिखाई और उनके ही गांव भोगनाडी में बीच चौराहे पर पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी।
1: नहीं, पर नमन है ऐसे ऐसे मुर्मू भाइयों को। उन्होंने अपने देश के लिए, अपने साथियों के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की।
2: हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हो भाई। कितनी हिम्मत और गर्व देती है ये स्वतंत्रता सेनानियों की बातें, है ना बाबा?
0: चांद, हिम्मत है तो अपनी जमीन पर जिसका कब्जा हुआ है उसे कह जाकर।
2: होल होल संथाल। बाबा, अब तो हम चुप नहीं रहेंगे, गलत बात पर आवाज उठाएंगे।
0: हाँ, उस इंसान को बताना होगा कि वो गलत कागज बनाकर हमारी चीज अपनी नहीं कर सकता। अब हम आजाद हैं, अंग्रेजों का अत्याचारी कानून नहीं है जो गलत को भी सही ठहराए।
2: बिल्कुल ठीक।
0: हमारे आजाद देश का कानून है जो दूध का दूध और पानी का पानी करता है।
1: हुलूर संथाल। हाँ बाबा, अब उसको जाकर पहले समझाऊंगा और नहीं माना तो फिर कानून का सहारा लेकर अपनी जमीन वापस लूंगा।
0: शाबाश।
2: बिल्कुल ठीक। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमें हमारी जमीन और उस पर हुए नुकसान का हजाना नहीं मिल जाता। हारेंगे नहीं, हम अपनी जमीन लेकर रहेंगे।
0: शाबाश मेरे बच्चों।
3: जय जोहार बाबा।
4: अभी आप सुन रहे थे नाटक हुल हुल संथाल। ये नाटक स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू और कान्हू मुर्मू पर आधारित था। लेखक योगेश अग्रवाल, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे ब्रजमोहन यादव, राजेश कंबोज, अन्नू शर्मा, प्रवीण कुमार भारती, अपूर्व गुप्ता, मोहम्मद बुरहान और अमर साहा।
5: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर शाम के 4 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी में और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
7: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
6: श्री मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल सके हैं और भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में कामयाब रहा है। इनमें कोविड महामारी और यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया संकट प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
7: हमने समुद्र तट पे समुद्र के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमें फैसला किया ये नहीं।

0: चल सके। पूरी में 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक भारत 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है। श्री मोदी ने देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से अपील की कि वे इन अवसरों का भरपूर लाभ उठाएं और भारतीय उत्पादों को विश्व बाजार तक पहुंचाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को यांत्रिक मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है।
0: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों, शहरों और स्कूलों में 15 वर्ष तक के मेधावी बच्चों की पहचान के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा और चुने गए बच्चों को अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की भी घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष एमएस राजा सुब्रमणि, थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज श्री अरबिंदो की जयंती पर उन्हें स्मरण किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने श्री अरबिंदो को एक महान दार्शनिक, राष्ट्रकवि, राष्ट्रवादी और विचारक बताया, जिन्होंने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता तथा मानव प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के प्रारब्ध और मानव परिवर्तन की असीमित संभावनाओं में श्री अरबिंदो का विश्वास आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री ने पारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पारसी समुदाय के लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान ने देश को अनगिनत तरीकों से समृद्ध किया है। और खेलों में, गाली ने श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 197 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। और मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. The nation is celebrating the 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. The hoisting of the national flag was synchronized with a 21-gun salute. For the first time, national song Vande Mataram was rendered during the Independence Day celebrations at the Red Fort. The Prime Minister described the chanting of Vande Mataram at the Red Fort as a historic moment.
0: लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
2: Highlighting the achievements made in different sectors, the Prime Minister said, over the past 12 years, defense production has increased nearly fourfold, khadi and village industries production grew by nearly fivefold, electronic manufacturing nearly sevenfold, modern railway coach manufacturing 21-fold and mobile manufacturing increased by 33-fold. He said internet users increased by nearly fourfold and digital transactions by 100 times.
0: हर साल औसतन

0: 12 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए।
1: The Prime Minister announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. He said this is a revolutionary step towards making quality education accessible to everyone, led by top teachers. The Prime Minister said government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things. Cost, quality and skill.
0: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
1: The Prime Minister highlighted the government's focus on critical minerals, saying the modern technology depends entirely on critical minerals and India is actively working to secure its position in this sector. Prime Minister Modi said that India has successfully overcome several unprecedented crises while progressing towards the goal of a developed nation by 2047. Indian embassies and consulates marked India's 80th Independence Day today with flag hoisting ceremonies, cultural programs and community gatherings. Thousands of Indian nationals and diaspora members joined the celebrations in Singapore, China and Hong Kong, underscoring India's strong people-to-people ties with the region. In Indonesia, at least 20 people were killed after a magnitude 7.7 earthquake struck off Flores region early today. Buildings collapsed, landslides were triggered and widespread panic was caused. According to early reports, 6 people were injured and 2 remained missing. The quake prompted a tsunami warning that was later lifted after monitoring showed no significant sea level changes. In cricket, India were 197 for the loss of 1 wicket at T against host Sri Lanka in the first of the 2-test series at Goa International Cricket Stadium. Earlier, India won the toss and elected to bat. The Indian Meteorological Department has forecast very heavy rainfall today at places over Arunachal Pradesh and Uttarakhand, parts of northeast India, Chhattisgarh, East Rajasthan, Himachal Pradesh, Gangetic West Bengal, Jammu and Kashmir, Ladakh are also likely to receive moderate to heavy rainfall during the next days. And that is the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अप्रस्तुत है खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना। खोए हुए व्यक्ति का नाम है तुषी कुमारी, पुत्री गणेश पासवान। इन्हें अंतिम बार 24/11/2025 को देखा गया। इनकी आयु 17 वर्ष 18 महीने है। शरीर की बनावट सामान्य शरीर। ये घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। जिस किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो, कृपया थाना नंद नगरी दिल्ली में संपर्क कर सकते हैं। अगली जो सूचना है वो पुरुष का मृतक हालत में एक शव मिला है जिनका नाम ज्ञात नहीं है। इनकी आयु लगभग 50 से 55 वर्ष है। शरीर की बनावट पतला शरीर, ऊंचाई और कद 5 फुट 5 इंच है। इनके संबंध में किसी को कोई सूचना प्राप्त हो तो कृपया थाना नंद नगरी दिल्ली में संपर्क करें। खोए हुए व्यक्ति का नाम है सुनीता, पत्नी जमुना प्रसाद। इन्हें अंतिम बार 30/4/2026 को देखा गया था। इनकी आयु 45 वर्ष है। शरीर

की बनावट पतला शरीर, ऊंचाई और कद 5 फुट है। ये दिमागी तौर पर कमजोर हैं और घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। जिस किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो तो कृपया थाना प्रभारी, थाना नंद नगरी दिल्ली में संपर्क करें। खोए हुए व्यक्ति का नाम है अनकेश पुत्र पान सिंह। इन्हें अंतिम बार 27/7/2026 को देखा गया। इनकी आयु 21 वर्ष है। शरीर की बनावट पतला शरीर, ऊंचाई और कद 5 फुट 6 इंच है। ये घर से बिना बताए कहीं चले गए हैं। जिस किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो तो कृपया थाना प्रभारी, थाना नंद नगरी दिल्ली में संपर्क कर सकते हैं। अगली जो सूचना है वो है थाना रोहटा जनपद मेरठ से। खोए हुए व्यक्ति का नाम है गुनगुन, पुत्र पुत्री जितेंद्र। इनकी आयु 15 वर्ष है। ऊंचाई 5 फीट 2 इंच। आंख नाक कान औसत। ये हल्के लाल रंग का सूट और सलवार पहने हैं और पैरों में हवाई चप्पल पहने हुए हैं। जिस किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो तो कृपया थाना प्रभारी, थाना रोहटा जनपद मेरठ में संपर्क करें। अगली जो सूचना है उसमें खोए हुए व्यक्ति का नाम है सना पुत्री मोमिन। इनकी आयु 15 वर्ष है। ऊंचाई 5 फुट। आंखों का विवरण सामान्य है। आंख नाक काल सामान्य। शरीर इनका जो पहनावा है वो काला सूट, काला पैजामा और पैरों में चप्पल पहने हुए हैं। जिस किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो तो कृपया थाना परीक्षित गढ़ मेरठ में संपर्क कर सकते हैं। अगली जो सूचना है वो थाना कांधला से जनपद शामली से है। मृतक गुड्डन जो कि गुमशुदा हैं, इनके पिता का नाम बिल्लू है। इनको अंतिम बार 1/10/2025 को मतनावली गांव में देखा गया। इनकी आयु 14 वर्ष है और इनका कद 5 फुट 2 इंच है। ये हल्के हरे रंग का सूट और सलवार पहने हुए हैं। जिस किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो तो कृपया थाना कांधला शामली में संपर्क कर सकते हैं। खोए हुए व्यक्ति का नाम है वंश, पुत्र विनोद निवासी ग्राम टिटोडा थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर। इनकी आयु 17 वर्ष है। ऊंचाई और कद 5 फुट 6 इंच। शरीर की बनावट आंख कान नाक औसत। ये सफेद रंग की टी शर्ट, नीले रंग की पैंट और पैरों में चप्पल पहने हुए हैं। जिस किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो तो कृपया थाना प्रभारी, थाना सरधना मेरठ में संपर्क कर सकते हैं। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी 6 बजकर माफ कीजिए 4

परिक्रमा कार्यक्रम होगा 4:30 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंजनी हम लेकर आएंगे 5:10 पर। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। हिंदी में समाचार होंगे 6:00। 6:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। 6:10 पर होगा हमारा कार्यक्रम चहल पहल।

किसानवाणी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 7:05 पर। गजल और कव्वाली का कार्यक्रम होगा 7:35 से। मुशायरा ये कार्यक्रम होगा 8:00। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। अखिल भारतीय फिल्म पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती आप सुन सकेंगे 9:30 पर।

0: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल को आवश्यकता है प्रधान वैज्ञानिकी तकनीकी अधिकारी, प्रधान छात्र गतिविधि और खेलकूद अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी तथा सहायक पंजीयक की। विस्तृत विज्ञापन, योग्यताएं, अनुभव, वेतन आदि की जानकारी उपलब्ध है वेबसाइट पर, जिसका पता है nitw.ac.in/staff-recruit। आवेदन ऑनलाइन ही जमा किए जा सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि रहेगी 19 अगस्त 2026। विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण में महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, जनसंपर्क अधिकारी और सहायक प्रबंधक की रिक्तियां उपलब्ध हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in। इसके अतिरिक्त आप इस वेबसाइट पर भी देख सकते हैं www.iepf.gov.in। राष्ट्रीय बाल भवन में आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाने संबंधी सूचना। राष्ट्रीय बाल भवन ने वेतन स्तर 7 में सहायक लेखा अधिकारी के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर 3 साल की अवधि के लिए भरने संबंधी एक विज्ञापन 2 मई 2026 को रोजगार समाचार, टाइम्स ऑफ इंडिया तथा दैनिक जागरण में प्रकाशित किया गया था। इन पदों के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तय की गई थी 30 जून 2026, लेकिन इसे अब 30 दिनों तक के लिए और बढ़ा दिया गया है और ये 30 दिन अतिरिक्त गिने जाएंगे इस विज्ञापन के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन के। रोजगार समाचार पत्र जो 8 से 14 अगस्त 2026 का है, उससे 30 दिनों के भीतर आप आवेदन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए वेबसाइट www.nationalbalbhavan.nic.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani.
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम Employment News। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
4: विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, यही तिरंगा है जो आज हर भारतीय के मन में गर्व जगाता है। यही तिरंगा है जिसकी छांव में हमारी विविधता एकता बन जाती है और जिसकी आन के लिए अनगिनत वीरों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्र भारत की 80वीं वर्षगांठ। आज का दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि ये उस संघर्ष की याद है जिसने हमें स्वतंत्र भारत दिया। ये उन अनगिनत बलिदानों को नमन करने का दिन है जिनकी वजह से आज हम अपने सपनों को अपनी राह दे सकते हैं, और ये उस संकल्प को दोहराने का दिन है कि भारत की प्रगति में हम भी अपना योगदान देंगे। आज जब देश का तिरंगा आसमान में शान से लहरा रहा है, तो आइए हम सब भी अपने भीतर वही ऊर्जा, वही विश्वास और

0: और नए सपनों को साकार करने का नया आत्मविश्वास है। तो इसी गर्व, उमंग और सकारात्मक संकल्प के साथ शुरू करते हैं आज की विशेष परिक्रमा। आज उस भारत के नाम जो अपनी विरासत पर गर्व करता है, वर्तमान को सशक्त बना रहा है और भविष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास से बढ़ रहा है। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी स्वतंत्र भारत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: एंड टू यू ऑल्सो वैष्णवी। वेल, दिस इज मी शगुन चोपड़ा विद वैष्णवी टुडे। एंड यस, मे द ट्राइकलर ऑलवेज फ्लाई हाई। फ्रीडम इन आवर माइंड, फेथ इन आवर वर्ड्स एंड प्राइड इन आवर सोल्स। इंडिपेंडेंस डे 2026। Well, yes, Independence Day. Whether you are connecting with family members, expressing gratitude to colleagues, or sharing patriotic updates, well, having the right words makes all the difference. And there were countless ordinary people who set aside their personal comforts to contribute to the struggle for freedom. That is why, upon seeing the tricolor today, one feels not only pride and proud, but also a sense of responsibility, which is to further strengthen through our own actions the freedom that was won at such a great cost. And well, yes, we are united, and let's also salute the martyrs for the freedom we enjoy today. Jai Hind.
0: जी बिल्कुल। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों की ओर। नजर डालते हैं आज की क्या प्रमुख हेडलाइंस रही हैं शगुन।
1: यस, बिगिनिंग नाउ। नेशन सेलिब्रेट्स इट्स 80th इंडिपेंडेंस डे टुडे विद एंथुसियाज्म। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीड्स द नेशन बाय होस्टिंग द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट इन दिल्ली।
0: लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: एंड इन हिज एड्रेस द प्राइम मिनिस्टर अनाउंसेस फ्री ऑनलाइन कोचिंग फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज एंड ट्रेनिंग इन एआई स्किल्स टू 1 crore यूथ इन नेक्स्ट 1 year।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।
1: मिस्टर मोदी एक्सप्रेसेस डिसमे ओवर सम नेशंस ट्राइंग टू वेपनाइज रिसोर्सेज टू फ्लॉन्ट देयर डोमिनेंस, क्रेडिटिंग इंडिया स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भरता इन मीटिंग द चैलेंज।
0: विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।
1: At least 20 people killed in Indonesia after a 7.7 magnitude earthquake hits its eastern coast.
0: और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत दोनों के बीच मुकाबला जारी।
1: So Vaishnavi, this is our segment Dateline India, and what else would it be about? It's Independence Day today.
0: श्रोता, जिस आजादी का जश्न हम आज मना रहे हैं उसके पीछे वर्षों का संघर्ष है।
1: True.
0: अनगिनत बलिदान है और लाखों दिलों की एक ही पुकार थी, भारत आजाद हो। किसी ने अपना बचपन खोया, किसी ने अपना परिवार, किसी ने अपना जीवन, लेकिन देश की आजादी के सपने से कभी समझौता नहीं किया। 15 अगस्त 1947 को जब तिरंगा पहली बार स्वतंत्र भारत के आसमान में शान से लहराया, तो उसके साथ उन हर आंखों के सपने भी पूरे हुए जिन्होंने गुलामी के अंधेरे में आजादी का उजाला देखा था। आज हम उसी उजाले में जी रहे हैं, इसलिए इस तिरंगे को सलाम करते हुए उन सभी वीरों को नमन करें जिन्होंने हमें यह दिन देखने का सौभाग्य दिया।
2: हमारा गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक रहा है।
3: हम चलते हैं 1947 में 14 और 15 अगस्त की गौरवान्वित मध्य रात्रि तक, जब प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में भारत ने अपनी नियति से साक्षात्कार किया। उस भाषण में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विजयी समापन का गौरव और उल्लास था।
2: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भारत के लिए महत्वाकांक्षी परिकल्पनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की।
4: Our public servants in various departments of government have to shed their role as rulers and have to become true servants of the people that their compeers are in all free countries. The people and the government on their side have to give them their trust and assure them conditions of service in keeping with the lives of the people in whose midst they have to live themselves. We welcome the Indian states which have acceded to India and to their people we offer our hands of comradeship. To the princes and the rulers of the states we say that we have no designs against them. we trust they will follow the example of the King of England and become constitutional ruler.

0: our model, the British monarchical system, which has stood the shock of two successive world wars, when so many other monarchies in Europe have toppled down. The Indians settled abroad in British colonies and elsewhere, we send our good wishes and assurances of our abiding interest in their welfare. To our minorities, we give the assurance that they will receive fair and just treatment and their rights will be respected and protected.
1: भारत अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों और राजनेताओं के आदर्शों पर चलता रहा है, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए जीवन समर्पित किया और निष्ठापूर्वक विभिन्न संवैधानिक पदों पर सेवारत रहे। आज अपार शक्ति सामर्थ्य से संपन्न भारत अपनी विशाल आर्थिक क्षमता और मानव पूंजी के साथ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
2: आइए हम एक साथ मिलकर संविधान सभा में सुचिता कृपलानी के अमर स्वर में गुंजित गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की मूल भावना के साथ वर्ष 2047 में भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ें।
3: Well, yes. So the grand celebrations at the Red Fort, they have already unfolded with Prime Minister Narendra Modi hoisting the national flag and thereby addressing the nation from the historic ramparts. And this year, there was a special first. For the first time since independence, Vande Mataram echoed from the Red Fort before the flag was hoisted. We have a detailed report. We'll now listen into it. It's a special report from our correspondent.
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: सो लिसनर्स, वंदे मातरम आवर नेशनल सॉन्ग, इट कैरीज द मेमोरी ऑफ अ मूवमेंट। सो एज वी मार्क 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम, अ सॉन्ग रिटन इन द एरा ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, वंस अगेन बिकेम पार्ट ऑफ द नेशंस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस एंड दिस हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम।
5: जी, और शुभम, आज जब हम स्वतंत्रता की इस ऐतिहासिक विरासत से आगे बढ़ते हैं तो एक सवाल स्वाभाविक रूप से सामने आता है, आने वाले भारत की दिशा कौन तय करेगा? जवाब है आज का युवा। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य केवल एक सरकारी संकल्प नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। स्वामी विवेकानंद का यह अमर संदेश, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, आज के युवाओं के उत्साह और आत्मविश्वास में दिखाई देता है।
3: इंस्पायरिंग वर्ड्स। एंड दिस ईयर यूथ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इंडिजिनस कैपेबिलिटीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दे हैव बीन प्लेस्ड फर्मली एट द हार्ट ऑफ द सेलिब्रेशंस। वैष्णवी,
5: 6G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सेमीकंडक्टर तक, ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर एनर्जी से लेकर स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी तक देश आगे की ओर देख रहा है।
3: एंड इनफैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर द इक्विपमेंट यूज्ड एट द रेड फोर्ट सेरेमनी वाज इंडिजिनसली बिल्ट। And this gives a strong message of आत्मनिर्भर भारत, right?
5: बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले साल 1 करोड़ युवाओं को AI की ट्रेनिंग देने की घोषणा की है। साथ ही 5 से 15 वर्ष के बच्चों की खेल प्रतिभा को पहचानने और उसे आगे बढ़ाने के लिए टैलेंट हंट की पहल की भी बात की गई है।
3: एंड वैष्णवी, अ डेवलप्ड इंडिया विल नॉट ओनली नीड इंजीनियर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स बट ऑल्सो साइंटिस्ट, एथलीट्स, क्रिएटर्स, फार्मर्स, इनोवेटर्स,

0: influencers, dreamers, and well, Independence Day can really be limited to one ceremony in Delhi, right?
1: No. बिल्कुल नहीं शगुन, हर घर तिरंगा से लेकर माई गॉव की गतिविधियों तक, स्कूलों कॉलेजों से लेकर समुदायों और सरकारी संस्थानों तक देश भर के नागरिकों ने स्वतंत्रता दिवस को एक जन उत्सव में बदल दिया है.
0: एंड वैष्णवी, द सेलिब्रेशंस हैव ट्रैवल्ड फार बियॉन्ड इंडिया टू, एंड इंडियन एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, दे मार्क द ओकेजन विद फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज. Cultural programs also follow and community gatherings. So in Singapore, Beijing and Hong Kong, members of the Indian diaspora came together to celebrate their connection with India, the Independence Day celebrations thereby.
1: इसका मतलब यही हुआ कि तिरंगे की पहचान सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है. वैश्विक नेताओं ने भी बधाई संदेश भेजे. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती साझेदारी को रेखांकित किया. वहीं अमेरिका के विभिन्न राज्यों के नेताओं और सांसदों ने भारतीय अमेरिका समुदाय के योगदान की सराहना की.
0: एंड आवर प्रोग्राम विच यू आर लिसनिंग टू लिसनर्स राइट नाउ इज कॉल्ड परिक्रमा. सो ऑन इंडियाज मोस्ट स्पेशल डे, हाउ कुड वी नॉट टेक अ परिक्रमा ऑफ इंडिया. सो वेल लेट्स बिगिन विद मी एंड वैष्णवी, मीशा गुन चोपड़ा एंड वैष्णवी, वेयर वी आर ब्रिंगिंग यू द स्पिरिट एंड सेलिब्रेशंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम अक्रॉस द नेशन. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद असम. द फोकस वॉज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लड रिहैबिलिटेशन एंड अ लॉन्ग टर्म विजन 2047 विद मेजर इन्वेस्टमेंट्स प्लान्ड इन रोड्स, स्कूल्स एंड रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट.
1: और अब हमारी ये परिक्रमा पहुंचती है कर्नाटक, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तकनीक और रोजगार से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया गया. छठी कक्षा से ईआई की शिक्षा, कोडिंग पहल, सैटेलाइट और ड्रोन के जरिए खेती का सर्वे और रोजगार के नए अवसर यानी युवा शक्ति को भविष्य की तकनीक से जोड़ने की कोशिश.
0: लेट्स गो नाउ टू छत्तीसगढ़. इंडिपेंडेंस डे कैरीड अ पर्टिकुलरली पावरफुल मैसेज फ्रॉम बस्तर. Villages that had once been affected by Maoist violence hoisted the tricolor, with many doing so far for the first time since independence. For the first time.
1: और अब आगे बढ़ते हैं मिजोरम की तरफ. मिजोरम में विकास को संतुलित और समावेशी बनाने पर बल रहा. वहीं तेलंगाना में विविधता में एकता को केंद्र में रखते हुए विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में नागरिकों की भागीदारी का संदेश दिया गया.
0: Heading now to त्रिपुरा. More than 1,300 students, teachers and alumni came together for Vande Mataram in 1,000 voices, Nagaland. Vande Mataram was rendered for the first time during the state-level Independence Day celebrations alongside a strong message of peace, unity and development there.
1: वहीं पंजाब में अटारी वाघा बॉर्डर पर तिरंगे की शान को देखने को मिली, जबकि हुसैनीवाला में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी गई. जम्मू कश्मीर के सभी 10 जिलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह हुए और श्रीनगर का बख्शी स्टेडियम मुख्य आयोजन का केंद्र रहा. वहीं हरियाणा से तमिलनाडु और झारखंड से पश्चिम बंगाल तक अलग अलग राज्यों में इस अवसर पर युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, सामाजिक न्याय, विकास और बेहतर प्रशासन जैसे मुद्दे प्रमुखता से सामने आए.
0: Now I'm about to present a beautiful idea. India does not celebrate freedom in just one language or one culture or one tradition.
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने शगुन.
0: We celebrated in hundreds of voices while standing beneath one tricolor. So Mahatma Gandhi once said, "The future depends on what you do today," and that brings us to the India of today. An India looking back at the sacrifices of its freedom fighters while looking ahead towards 2047.
1: बिल्कुल शगुन, जैसा आपने कहा, हमारे देश की सबसे खूबसूरती यही है, विविधता में एकता. और इस पूरे सफर को देखते हुए एक बात तो साफ है, भारत की आजादी की कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह लगातार आगे बढ़ते रहने की कहानी भी है. और शायद आज हम सबके लिए एक सवाल जरूरी है, अपने भारत को और मजबूत बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आजादी का इतिहास लाखों लोगों ने मिलकर रखा था. और आने वाले भारत का इतिहास भी हम सबकी भागीदारी से ही लिखा जाएगा. भारत को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई.
0: जय हिंद. नाउ मूविंग ऑन, इट्स आल्सो हरियाली तीज.
1: सावन की बारिश के साथ जब प्रकृति का रंग बदलता है, पेड़ पौधों पर हरियाली छा जाती है और त्योहारों की रौनक बढ़ने लगती है, तो वातावरण में एक अलग ही उमंग महसूस होती है. झूलों की सजावट, हाथों में मेहंदी और लोकगीतों की गूंज, ये सभी मिलकर हरियाली तीज के आगमन का संकेत देते हैं.

0: beautiful. So there is something truly magical about Indian festivals. Everybody knows that. And every season brings its own celebration, its own colors, its own traditions, and its own beautiful story. Haryali Teej captures the very spirit of the monsoon greenery, devotion, love, and togetherness.
1: और हरियाली तीज की इस खूबसूरती के पीछे सिर्फ सावन की हरियाली नहीं है शमन, अगर हम देखें तो इसके पीछे एक गहरी धार्मिक मान्यता भी जुड़ी हुई है। क्या आप जानते हैं श्रोताओं कि इस पर्व की कथा में हमें सीधे देवी

0: आप जानते ही श्रोताओं कि इस पर्व की कथा में हमें सीधे देवी पार्वती और भगवान शिव की तपस्या और समर्पण की ओर ले जाती है। मान्यता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए लंबे समय तक कठोर तपस्या की। इसी अटूट साधना और उनकी दृढ़ संकल्प की स्मृति हरियाली तीज की परंपरा से जुड़ी हुई है।
1: ट्रू वैष्णवीज, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, गॉडेस पार्वती परफॉर्म्ड इंटेंस पेनेंस टू विन लॉर्ड शिव एज हर हस्बैंड, एंड इट इज बिलीव्ड दैट शी अंडरटुक दिस स्पिरिचुअल जर्नी थ्रू 108 बर्थ्स, एंड इन द फाइनल बर्थ एज द डॉटर ऑफ किंग हिमावन शी गेव अप द कंफर्ट्स ऑफ द पैलेस एंड डिवोटेड हरसेल्फ कंप्लीटली टू पेनेंस।
0: पार्वती की तपस्या के सामने परिस्थितियां भी उनके संकल्प को डिगा नहीं सकी। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसी पवित्र मिलन की स्मृति में हरियाली तीज मनाई जाती है, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ती है।
1: एंड मैरिड वुमेन दे ऑब्जर्व द फास्ट एंड प्रे फॉर द वेलबीइंग एंड लॉन्जेविटी ऑफ देयर हस्बैंड्स एंड फॉर अ हैप्पी मैरिड लाइफ। Unmarried women seek the blessings of Goddess Parvati for a loving and devoted life partner.
0: और इस पर्व की पहचान इसके रंगों और रीति रिवाजों से भी होती है। महिलाएं हरे रंग के परिधान और चूड़ियां पहनती हैं, हाथों पर मेहंदी रचाती हैं और सजे हुए झूलों के आसपास उत्सव का आनंद लेती है। 16 श्रृंगार की परंपरा भी इस अवसर को विशेष बनाती है।
1: And in many regions, married women exchange bangles, sindoor, sweets and gifts. This tradition is associated with Sindhara, adding another layer of warmth and togetherness to the festival. Jaipur's Hariyali Teej is exceptionally famous due to its grand royal procession, also vibrant Lahiriya traditions and deep cultural tribute to monsoon greenery and marital devotion. And Vaishnavi, it stands out because of the iconic Shahi Sawari, the royal procession of Teej Mata, the festive culinary wave of Ghevar, and centuries-old heritage rituals. And well, yes, we will continue.
0: जी, राजस्थान में आज हरियाली तीज का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। तीज पर मेहंदी लगाने, झूला झूलने और लोक गीतों का भी विशेष महत्व है। कई स्थानों पर मेले भी भरते हैं। महिलाओं के इस विशेष पर्व पर पर्यटन विभाग की ओर से राजधानी जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाएगी।
2: सावन के साथ प्रदेश में चढ़ा लहरी का रंग अब तीज के उल्लास में बदल गया है। महिलाएं 16 श्रृंगार कर पारंपरिक पचरंगी और मोठड़ा लहरी के साथ आधुनिक डिजाइन तथा गोटा पत्ती वर्क वाले परिधान पहनकर शहर के बाग बगीचों और पार्कों में सजाए गए झूलों का आनंद ले रही हैं। हाथों में मेहंदी रची है, चूड़ियों की खनक सुनाई दे रही है, पायलों की झंकार और लोकगीत तथा मल्हार गूंज रहे हैं। वहीं तीज की व्हील बनाकर भी युवतियां और महिलाएं मॉडर्न ट्रेंड में कहीं भी पीछे नहीं हैं। पर्यटन विभाग की ओर से आज राजधानी जयपुर में तीज की सवारी निकाली जा रही है। बैंड बाजों और शाही लवाजमे के साथ जनानी ड्योढ़ी से ये सवारी निकल रही है। इसके लिए प्रशासन ने यातायात के विशेष प्रबंध किए हैं। इसी कड़ी में कल बूढ़ी तीज की सवारी भी निकाली जाएगी। हरियाली तीज से एक दिन पहले कल सिंजारा पर्व पारंपरिक उत्साह आधुनिक रंगत के साथ मनाया गया। सिंजारा दूज यानी श्रावण शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार नवविवाहिता का पहला सिंजारा ससुराल से आता है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर से माधुरी वशिष्ठ।
1: मे द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिव एंड गॉडेस पार्वती ब्रिंग ऑल द फर्स्ट हैप्पीनेस एंड वार्म विशेस टू एवरीवन ऑन हरियाली तीज। टुडे लिसनर्स, इट्स आल्सो नवरोज एंड इंडियन न्यू ईयर डजंट ऑलवेज अराइव इन जनवरी द फर्स्ट। डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजंस वेलकम द न्यू ईयर ऑन डिफरेंट डेज, वन ऑफ व्हिच इज नवरोज।
0: शगुन, जैसे ही हम पहले चर्चा कर ही रहे थे कि भारत की सांस्कृतिक विविधता की खूबसूरत मिसाल उसके अलग अलग पारंपरिक नववर्ष भी है, वैसे ही महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा, केरल में विशु और पंजाब में बैसाखी इन पर्वों के साथ नई शुरुआत और नए वर्ष का स्वागत करने की परंपरा जुड़ी हुई है।
1: सो वैष्णव, व्हाई डोंट वी टर्न आवर अटेंशन टू अनदर फैसिनेटिंग न्यू ईयर ट्रेडिशन व्हिच वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट्स नवरोज, द इरानियन एंड पर्शियन न्यू ईयर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुसियाज्म बाय ज़ोरास्ट्रियंस including the Parsi community in India. So Nowruz is inscribed on UNESCO's representative list of the intangible cultural heritage of humanity, reflecting its significance as a shared cultural tradition.
0: तो आज नवरोज के अवसर पर इस पर्व से जुड़े एक बेहद खूबसूरत विचार को याद करते हैं। नया दिन यानी नई शुरुआत, नई उम्मीद रखने का दिन, बीते हुए को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का दिन और आने वाले कल का स्वागत करने का दिन। तो नवरोज मनाने वाले सभी श्रोताओं

0: को हमारी ओर से नवरोज मुबारक। और अब समय हो चला है क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि आज क्या कुछ खास है उनके पास।
1: सो वैष्णवी, देयर इज अ पैट्रियोटिक एटमॉस्फेयर अक्रॉस द कंट्री ऑन इंडिपेंडेंस डे एट द महाकालेश्वर टेंपल इन उज्जैन। डिवोशन टू लॉर्ड शिव वाज आल्सो सीन अलोंग विद अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म।
2: At the one famous Shri Mahakaleshwar Temple in Ujjain, Madhya Pradesh, Baba Mahakal was given a special tricolor decoration early this morning on Independence Day. During the Bhasma Aarti, a tricolor tripund was made on Baba Mahakal's forehead using saffron, white and green colors. The temple doors were opened early in the morning for the Bhasma Aarti, followed by the Abhishek and worship of Lord Mahakal with Panchamrit. Baba Mahakal was then decorated with tricolor tripund, a silver om and a crown decorated with bilwa leaves and a rudraksha garland. As part of the Bhasma Aarti tradition, Lord Ganesha, Goddess Parvati and Lord Kartiki were also worshipped. After this, sacred Bhasma was offered to the Jyotirlinga as per the rituals. A large number of devotees had darshan of Baba Mahakal in his tricolor form. For Parikrama, Abhinav Goyal, Akashwani Bhopal.
0: शगुन, अब समय हो गया है खेल जगत से कुछ खबरें देने का श्रोताओं को, तो क्या कुछ खबर है आज?
1: वी हैव अपडेट्स फ्रॉम क्रिकेट। इंडिया वर 236 फॉर 2 अगेंस्ट होस्ट श्रीलंका इन द फर्स्ट ऑफ द टू टेस्ट सीरीज एट गोल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। अर्लियर इंडिया वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट।
0: अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। सबसे पहले बात करते हैं सरदार अजीत सिंह के बारे में। जिस दिन देश ने आजादी की पहली सुबह देखी, उसी दिन पंजाब के इस निर्भीक क्रांतिकारी ने अंतिम सांस ली। सरदार अजीत सिंह शहीद भगत सिंह के चाचा और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ पंजाब में किसानों को संगठित किया। पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। लंबे समय तक निर्वासन में रहने के बाद वे स्वतंत्र भारत की धरती पर लौटे, लेकिन 15 अगस्त 1947 को उनका निधन हो गया। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महादेव देसाई के बारे में। आज उनकी पुण्यतिथि है। महादेव देसाई महात्मा गांधी के अत्यंत करीबी सहयोगी, सचिव और स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे। उन्होंने गांधी जी के विचारों और आंदोलनों तक को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1942 में पुणे के आगा खान पैलेस में उनका निधन हुआ।
1: Today we are also remembering Ustad Amir Khan. Well, one of the greatest and most influential Indian classical singers of the 20th century. He founded the famous Indore Gharana. He was deeply loved for his deeply spiritual, slow and meditative style of singing.
0: बिल्कुल, उस्ताद आमिर खान की गायकी में शास्त्रीय संगीत की गहराई, ठहराव और आत्मिक अनुभूति का अद्भुत संगम था। आइए आपको सुनाते हैं उनके सुरमयी विरासत की एक झलक।

0: केना सांखला को भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। विदेश में बाघों के संरक्षण के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक थे और प्रोजेक्ट टाइगर के पहले निदेशक बने। उनके प्रयासों ने भारत के बाघ संरक्षण को एक संगठित दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: वेल वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग मैक्सवेल रोच, द जैज ड्रमर एंड कंपोजर, अ पायनियर ऑफ बीबॉप। ही वर्क्ड इन मेनी अदर स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक एंड इज जनरली कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट

आज के दिन जन्मे अरबिंदो घोष का जीवन भारत की स्वतंत्रता और आध्यात्मिक चेतना दोनों से गहराई से जुड़ा रहा। वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में रहे और बंदी मातरम जैसे पत्रों के माध्यम से पूर्ण स्वतंत्रता का

0: विचार सामने रखा। बाद में श्री अरबिंदो ने पुदुचेरी में आध्यात्मिक साधना की और समग्र योग का मार्ग विकसित किया। आज रामदरस मिश्र की जयंती है। रामदरस मिश्र ने कविता, कहानी और उपन्यास तथा साथ ही आलोचना हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया। ग्रामीण जीवन और आम आदमी की संवेदनाओं को उन्होंने अपनी रचनाओं में विशेष स्थान दिया। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: Today we are also remembering the unforgettable Rakhi Gulzar. A cinematic journey in the world of Indian cinema, few names shine as brightly as Rakhi Gulzar. And well, we know her for her incredible talent and versatility.
0: दाग, तपस्या, राम लखन, करण अर्जुन और सीमा जैसे फिल्मों में उनके अभिनय को विशेष सराहना मिली। उन्हें पद्मश्री और दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों सहित कई सम्मान मिले हैं। आइए आपको सुनाते हैं उसी दौर का एक संगीत।

आज जयंती है लोकप्रिय गीतकार इंदिवर की, जिन्होंने गीतों को अपने शब्द दिए। इंदिवर का वास्तविक नाम वैसे तो श्यामलाल बाबू राय था। उन्होंने हिंदी सिनेमा को अनेक लोकप्रिय गीत दिए। आइए आपको सुनाते हैं उनकी कलम से निकला एक यादगार।

खूबसूरत गीत के साथ आज की कार्य परिक्रमा कार्यक्रम में बस इतना ही। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर एक सशक्त, समृद्ध और उज्जवल भारत का निर्माण करें।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल सके हैं और भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में कामयाब रहा है। इनमें कोविड महामारी और यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया संकट प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक भारत 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है।
1: 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, ये बहुत बड़ा अवसर है। मैं मेरे MSME को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है, दुनिया में हमें पहुंचना है। भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे, चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, दवाइयां हो, हमें मौका छोड़ना नहीं है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले वर्ष एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने गरीबों और मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री

0: कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष एनएस राजा सुब्रमणि, थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री अरविंदो की जयंती पर उन्हें स्मरण किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा, श्री अरविंदो को एक महान दार्शनिक, राष्ट्रवादी कवि और विचारक बताया, जिन्होंने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता तथा मानव प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने पारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पारसी समुदाय के लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान ने देश को अनगिनत तरीकों से समृद्ध किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना फास्ट DS नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इसके अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों और अघोषित विदेशी आय की घोषणा कर सकते हैं। ये योजना कल से लागू होगी और इसके अंतर्गत ब्यौरा दाखिल करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 31 दिसंबर है। गोल में श्रीलंका के साथ दो मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 239 रन बना लिए हैं। इससे पहले आज भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। FIH हॉकी विश्व कप में भारत का मुकाबला वेल्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुकाबला भारत ने 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The nation is celebrating the 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. The hoisting of the national flag was synchronized with a 21-gun salute. For the first time, national song Vande Mataram was rendered during the Independence Day celebrations at the Red Fort. The Prime Minister described the chanting of Vande Mataram at the Red Fort as a historic moment.
3: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
2: Highlighting the achievements made in different sectors, Prime Minister said, over the past 12 years, defence production has increased nearly fourfold, khadi and village industries production grew nearly fivefold, electronic manufacturing nearly sevenfold, modern railway coach manufacturing 21-fold, and mobile phone manufacturing increased 33-fold. He said internet users increased nearly fourfold and digital transactions by 100 times. The Prime Minister announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. He said this is a revolutionary step towards making quality education accessible to everyone, led by top teachers. The Prime Minister said the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things, cost, quality and skill. The Prime Minister highlighted the government's focus on critical minerals, saying that modern technology depends entirely on critical

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम। तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम लोक रंजनी लेकर के। और जैसा कि हमारे सभी श्रोता जानते हैं कि आज 15 अगस्त है, स्वाधीनता दिवस है, तो आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: तो सी भाई, हमें आजादी यूं आसान नहीं मिली, इसके पीछे लाखों अनाम शहीदों की कुर्बानी है। महात्मा गांधी का अहिंसा का रास्ता, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की शहादत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, ये नाम इतिहास नहीं हमारी आत्मा है। गांव-गांव की माताओं ने अपने बेटे देश के लिए दिए, तब जाकर हमें ये आजादी नसीब हुई।
0: बिल्कुल, तो इसी क्रम में नीलम बहन सबसे पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं एक देशभक्ति गीत। कलाकार हैं गोपाल सिंह

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे गोपाल सिंह बर्मन से ये देशभक्ति गीत।
1: नीलम बहन, हम आजादी की बात कर रहे थे अभी इस देशभक्ति गीत से पहले। ये जो आजादी हमको मिली है, ये राष्ट्रीय एकता के बिना संभव नहीं थी, और राष्ट्रीय एकता के बिना कोई भी देश प्रगति और स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकता। स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही राष्ट्रीय एकता का महत्व भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण रहा है।

0: महात्मा गांधी, भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने भारतवासियों में एकता का भाव जगाया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश ने मिलकर ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वतंत्रता प्राप्त की। ये एकता ही थी जिसने हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरने का मार्ग प्रशस्त किया।
1: बिल्कुल, राष्ट्रीय एकता का मतलब है देश के सभी नागरिकों का भिन्न भिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों के बावजूद एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर रहना। भारत एक विशाल देश है जहां विभिन्न क्षेत्र, धर्म, जाति और परंपराओं का संगम देखने को मिलता है। ये विविधता हमारी पहचान है, लेकिन इसके साथ ही ये एकता की आवश्यकता को अंकित करती है।
0: बिल्कुल, राष्ट्रीय एकता से देश में सामाजिक शांति और स्थिरता बनी रहती है, जो किसी भी समाज के विकास के लिए आवश्यक है। जब लोग एकजुट रहते हैं तो वे बाहरी आक्रमणों और आंतरिक समस्याओं का मजबूती से सामना कर सकते हैं। राष्ट्रीय एकता से नागरिकों में सहयोग, भाईचारा और सामूहिक प्रयासों का भाव बढ़ता है, जिससे देश की उन्नति में सहायता मिलती है।
1: बिल्कुल, इस प्रकार राष्ट्रीय एकता न केवल देश की अखंडता के लिए जरूरी है, बल्कि समाज को आगे बढ़ाने और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए भी अनिवार्य है।
0: बिल्कुल, तो नीलम बहन, ये तो बात रही राष्ट्रीय एकता की, और अब अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं एक और देशभक्ति गीत। कलाकार हैं राजपाल सिंह और योगेंद्र निमचाना।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे राजपाल सिंह और योगेंद्र निमचाना से ये देशभक्ति गीत।
1: नीलम भाई, स्वतंत्रता दिवस सिर्फ झंडा फहराने और मिठाई खाने का दिन नहीं है, बल्कि ये आत्ममंथन का दिन है। गांधी जी ने कहा था, स्वराज का मतलब है पहले खुद पर राज करना। इसीलिए हमें भ्रष्टाचार से, नफरत और भेदभाव से, गंदगी और लापरवाही से और आलस से आजाद होना है। अगर भारत का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य ईमानदारी से निभाए तो कोई भी भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता।
0: बिल्कुल शशि भाई, स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा देश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक विचार है, विविधता में एकता का विचार, वसुधैव कुटुम्बकम का विचार। तो आइए इस स्वाधीनता दिवस पर अपने शहीदों को नमन करें और जीते जी अपने देश के लिए कुछ करने का प्रण लें।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं एक और देशभक्ति गीत। कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह।

0: सबक सिखाया अंग्रेजों को, मद में घूमे थे अंधे।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह से ये देशभक्ति गीत,
2: और इसी देशभक्ति गीत के साथ आज का लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी श्रोताओं को राम राम, राम।

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: नमस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की खबरों का खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अमीषा पटेल।
2: नमस्कार
3: अमीषा। कर्नाटक संगीताच्या कार्यक्रमात आपण ऐकत होतात शिवकुमार अनंतरमण यांचं व्हायोलिन वादन, राग जगत मोहिनी आणि हेमावती आपण ऐकलेत। त्यांना मृदुंगम साथ कुमार एस कृष्णमूर्ती यांची होती। हा कार्यक्रम आकाशवाणीच्या मुंबई केंद्रावरून प्रसारित करण्यात आला। संध्याकाळचे 5:30 वाजले आहेत। युवक मित्रांसाठी कार्यक्रम युववाणी।

0: आकाशवाणी जळगाव केंद्र निर्मित युवकांसाठी कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणीच्या मुंबई केंद्रावरून प्रसारित करण्यात आला. 6 वाजता थोड्याच वेळात दिल्ली केंद्रावरून हिंदी आणि इंग्रजीतून बातम्या सहक्षेपित केल्या जातील.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती. राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की. इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ. श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया. प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है.
2: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा. आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया. इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया है. जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है.
2: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था. AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है. लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों, शहरों और स्कूलों में 15 वर्ष तक के मेधावी बच्चों की पहचान के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया. महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. मेघालय के राज्यपाल CH विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में सरकार स्वतंत्रता दिवस पर

0: पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। लातविया ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप के तट के पास आज आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वीं ब्रिक्स ICT कार्य समूह की बैठक से होगी। 20 अगस्त को भारत डिजिटल ब्रिक्स फोरम और एक्सपो की मेजबानी करेगा। और खेलों में गोल में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक आज भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। उधर नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन ने FIH हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में भारत और वेल्स के बीच मुकाबला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The nation is celebrating the 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the celebrations at the iconic Red Fort in Delhi. The national flag was hoisted in synchronization with a 21-gun salute. For the first time, the national song Vande Mataram was rendered during the Independence Day celebrations at the Red Fort. The celebrations this year also commemorate Yuva Shakti, acknowledging the contribution of young India in building a Vikasit Bharat by 2047. Addressing the nation from the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Modi said that for the first time since independence, Vande Mataram is echoing from the Red Fort.
2: Azadi ke baad 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: The Prime Minister said over the past 12 years, the determination and dedication of crores of citizens have helped take the country to new heights. He said 25 crore people have come out of poverty during this period. Mr. Modi said India, once counted among the fragile 5 economies, has now emerged as a major and the fastest growing economy in the world. He said India has set an ambitious goal of becoming a developed nation by 2047. On the occasion, the Prime Minister announced free online coaching for poor and middle-class families preparing for various public examinations. He also announced that the government will provide AI skilling training to 1 crore youth over the next 1 year.
2: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है।
1: Highlighting the government's focus on critical minerals, Mr. Modi said modern technology depends entirely on these minerals and India is actively working to secure its position in the sector. The Prime Minister said energy security is one of the major requirements of the present times and the government

0: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी न्यगादीत यत विगतेषु द्वादश वर्षेषु देशस्य कोटिशः नागरिकाः स्वकीयेन दृढसंकल्पेन समर्पणेन च राष्ट्रम् उन्नत शिखरे प्रापयितुं सर्वविध प्रयासान् कृतवन्तः। विविधेषु क्षेत्रेषु प्राप्ताः उपलब्धयः प्रकाशयन् सः अवदत् यत् द्वादश वर्षेषु रक्षोत्पादने प्रायः चतुर्गुणिता, खादी ग्रामोद्योग उत्पादने पञ्चगुणिता, इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्षेत्रे सप्तगुणिता, आधुनिक रेल निर्माण क्षेत्रे एकविंशति गुणिता, अथ च संचार दूरभाष निर्माण क्षेत्रे त्रयस्त्रिंशत् गुणिता वृद्धिः सञ्जाता। सः असूचयत् यत् अन्तर्जाल उपयोक्तॄणां संख्यायां चतुर्गुणिता अथ च अंकीय वित्तीय विनिमयेषु च शतगुणिता वृद्धिः अभवत्।
0: हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए।
1: प्रधानमन्त्रिणा निर्धन मध्यम वर्गीय कुटुम्बानां कृते विविध सार्वजनिक परीक्षाभ्यः निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षणस्य घोषणम् अकारि। सः अवदत् यत् शीर्ष अध्यापकानां निर्देशने उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षां सर्वसुलभां विधातुम् एतत् एकं क्रान्तिकारी पदक्षेपमस्ति, येन मध्यम वर्गीय कुटुम्बानां सहस्रकोटि रूप्यकाणां रक्षणं भविष्यति।
0: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: प्रधानमन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् आगामी एकस्मिन् वर्षे 1 कोटि युवभ्यः कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशले प्रशिक्षणं प्रदास्यते, येन ते वैश्विक AI क्षेत्रे नेतृत्वं कर्तुं समर्थाः भवेयुः। सः अवदत् यत् भारतेन व्ययः, गुणवत्ता, कौशलं चेत्येतेषु त्रिषु मुख्यस्तम्भेषु विशेषावधानं प्रदातव्यम्।
0: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
1: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महत्वपूर्ण खनिजेषु सर्वकारस्य विशेषावधानं प्रकाशयन् अवदत् यत् आधुनिक प्रौद्योगिकी पूर्णतया महत्वपूर्ण खनिजानामुपरि आश्रिता विद्यते। भारतं च अस्मिन् क्षेत्रे स्वस्थानं सुरक्षितं सक्रियतया कार्यं करोति। प्रधानमन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् विश्वस्मिन् प्रत्येकं राष्ट्रं स्वकीय हितानां रक्षणाय प्रयतते, किन्तु दौर्भाग्येन अस्मिन् संकटकाले कैश्चिद्भिः देशैः स्वप्रभुत्व प्रदर्शनार्थं संसाधनानां अस्त्रीकरणस्य कुत्सितं षड्यंत्रं कृतम्।
0: दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है। रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चीप, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर

0: याबरोबरच आजचा विशेष ध्वनिचित्र हा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागाने सादर केला. सादरकर्त्या संगीता गोडबोले, निर्मिती सहाय्य भारती गांधी, निवेदन उमा रायकर.
1: विशेष ध्वनिचित्र आता आपण ऐकलं. आता प्रसारित करत आहोत इस सप्ताह संसद में या कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण.
2: ये आकाशवाणी है. अब आप वैष्णवी से संसद में हुई इस सप्ताह के कार्यवाही की समीक्षा सुनिए. लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश. संसद के मॉनसून सत्र का ये चौथा और अंतिम सप्ताह था. इस सप्ताह भी दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई तथा अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया. सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने इन मुद्दों पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर हंगामा किया. सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे. हंगामे के कारण बैठक एक मिनट के अंदर ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई. सदन की कार्यवाही फिर आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही. हंगामे के बीच ही विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए. सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृहमंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने को भी तैयार है. इस बीच विधि एवं न्याय मंत्री मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया. उन्होंने कहा कि विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलने का विधेयक नहीं है. विधेयक का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है. सदन ने विपक्ष के हंगामे के बीच ही विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया. इसके बाद बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. उधर राज्यसभा की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया. हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई. 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए हंगामा जारी रखा. सदन में व्यवस्था न बनते देख हरिवंश ने बैठक को 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दिया. 15 मिनट बाद बैठक फिर शुरू होने पर सदन में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक और कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को लिया गया. बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 का उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा स्पष्ट बनाना है. राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया. लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है. विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों ने कुछ देर नारेबाजी करने के बाद विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही अदालती मामलों में बैंक के पक्ष को मजबूती से रखा जा सकेगा. इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने बैंक ग्राहकों के साथ बढ़ते साइबर अपराध को लेकर चिंता व्यक्त की. इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू करने से रोकता है.

चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण पुर्जे तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य निहित है। मंत्री के जवाब के बाद कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। तत्पश्चात विशेष उल्लेख के जरिए सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामा देखते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कुछ देर बाद ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। इस दौरान शोरगुल जारी रहा और हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा शुरू हो गया और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जब 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सदन में वही नजारा दिखा और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वहीं कुछ देर बाद विपक्ष के कई दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। सदन ने चर्चा के बाद इस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी और विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक में विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जवाब दिए जाने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। इसके बाद उच्च सदन में विशेष उल्लेख लिया गया जिसमें कई सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। शाम 4:30 पर उच्च सदन की बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कुछ मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही और प्रश्नकाल चलाने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा, नीतियों और विचारों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन देश सदन चलते हुए देखना चाहता है। 2 बजे बैठक पुनः शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन FCRA विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और द्रमुक ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के एक आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। इसके बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दी। नियम के अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे जिनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति वर्ष 2026 के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने अपराह्न 2:27 पर सदन की बैठक 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे बैठक पुनः शुरू हुई तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा

एवं पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने बिना चर्चा के विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही 3:15 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की 2 खंडों वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। उधर राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही माकपा सदस्य जॉन ब्रिटास ने कहा कि भाजपा की एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति से अनुरोध किया कि वे संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें। सभापति राधाकृष्णन ने सदस्यों को टिप्पणियां करते समय ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। सभापति ने कहा कि वे संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे। सदन में हंगामा देखते हुए सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होने पर भाजपा सदस्य सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। इसके बाद कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए। उसके बाद सदन ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी, जिसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा का सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन ने विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया। इस विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। बृहस्पतिवार को दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे आरंभ होने पर अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने के लिए कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वे अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयकों, पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों के गायन की रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता तथा सदस्य सदन में मौजूद थे। उधर राज्यसभा भी बृहस्पतिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। ये राज्यसभा का 271वां सत्र था। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां उन्होंने भाषण दिया था। श्री खड़गे ने मांग की कि मंच का शुद्धिकरण करने वाले के खिलाफ अस्पृश्यता अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। सभापति राधाकृष्णन तथा सदन के नेता JP नड्डा ने इस घटना की निंदा की। सदन के नेता ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। इसके बाद सदन में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान मंत्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना पत्थर, लोह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है, जबकि 49 गौण खनिजों के मामलों में राज्यों के अधिकार बरकरार रखेंगे। चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है।
सदन ने विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने के लिए द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों

0: द्वारा पेश संशोधन को विध्वनिमत से खारिज कर दिया।
1: इस सप्ताह संसद में या कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आता आपण ऐकलं। यानंतर थोड्याच वेळात दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणारी बातमीपत्र आणि स्पॉटलाइट हा कार्यक्रम आम्ही सहक्षेपित करत आहोत।
2: हीरे, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया में फ्लोरेस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 3-1 से हराया और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
3: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया।
3: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है।
3: एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
3: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व

0: मौका मिले वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया।
2: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामान

0: जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
1: स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षों से चली आ रही गौरवशाली विरासत का स्मरण किया गया। इस वर्ष पहली बार लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की। सेना के बैंड ने वंदे मातरम की मधुर धुन प्रस्तुत की और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान का भी गायन किया गया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया था। सुपर्णा और सौम्य के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल सीएच विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस समारोह करगिल के ख्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। आकाशवाणी करगिल ने बारू परिसर में उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। मणिपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह इम्फाल पश्चिम स्थित प्रथम मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, सतत विकास और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। लातविया के विदेश मंत्रालय ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। इसराइल के राजदूत रुवे नजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिनो, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोने, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायोग ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप तट के पास आज आई 7.5

0: 7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। भूकंप के बाद देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। मुख्य शहर माउमेर में बचाव दल ने 20 शव बरामद किए और 6 घायलों को बाहर निकाला। दक्षिणी लेबनान में आज इसराइल के हवाई हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। इसराइल की सेना ने कहा है कि इसराइली सैनिकों के खिलाफ की गई एक कार्रवाई के जवाब में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट न्यूज www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के कारण प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
1: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के अलवर में अलवर सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से विभिन्न डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों और पशु आहार संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत नवनियुक्त 10,500 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वें ब्रिक्स ICT कार्य समूह की बैठक से होगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21 अगस्त तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। और खेलों में नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। वहीं श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास आए भूकंप में 47 लोगों की मौत और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये

आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 80वें यौमे आज़ादी का जश्न मनाने में मुल्क की क़यादत की और लोगों पर जोर दिया कि वो एक मजबूत और खुदकफील भारत के लिए बड़े ख्वाब देखें। वज़ीर-ए-आज़म ने विकसित भारत के लिए नौजवानों और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए जाने पर जोर दिया और भारत को नई बुलंदियों पर ले जाने की खातिर नौजवानों की क़ुव्वत को बरूए-कार लाने के मकसद से सप्तधारा फ्रेमवर्क का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट की एटमी बिजली की सलाहियत के निशाने का ऐलान

0: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
1: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
0: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सेहत नामा,
3: आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में इम्तिहान फिल्म का गाना। इसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत से सवारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

पुकार के ओ राही ओ राही।

आइए अब सुनते हैं मन्ना डे महेंद्र कपूर और श्यामा चित्तर की आवाज में शोर फिल्म का गाना। गीत लिखा है राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से हुजूर।
4: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
5: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
4: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
5: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
4: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
5: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
4: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
5: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
6: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
5: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदार राज्याध्यक्ष आ रही हैं।
6: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
5: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रस्तुत है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: प्राचीन काल से हिंदुस्तान में भाषा, धर्म, आहार विहार और भौगोलिक परिस्थिति में विविधता पाई जाती है। ब्रिटिश काल में भी राजकाज की सहूलियत को देखते हुए प्रांत रचना सीमित संख्या में थी। फिर भी सार्वजनिक रूप से आम जीवन में बोली जाने वाली 15 से अधिक ऐसी भाषाएं तो थीं जिनकी अपनी अधिकृत लिपि थी।
1: वंदे मातरम, इस रचना की और उसके रचयिता की बात करें तो मातृभाषा बांग्ला और अंग्रेजी के ज्ञाता तो वे थे ही। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय गीर्वाण भाषा संस्कृत के भी अध्येता थे। संस्कृत साहित्य का प्रभाव उनके साहित्य पर था। वंदे मातरम गीत का निर्माण एक सहज उमंग से हुआ था, इसलिए उसे भाषा के बंधन स्वयं बंकिम चंद्र भी नहीं लगा सके। यह गीत बांग्ला और संस्कृत भाषा का मिश्रण है, पर इसमें हर वाक्य में एक शब्द बांग्ला और एक शब्द संस्कृत ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें कुछ वाक्य पूरे पूरे बांग्ला हैं। ऐसा होने पर भी इसकी प्रभावकारिता कहीं भी खंडित नहीं होती। वंदे मातरम का पहला अनुवाद बंकिम चंद्र जी के जीवन काल में ही हुआ और यह अनुवाद संस्कृत में किया गया था। विजयलाल दत्त द्वारा रचित जागो माँ आमार इस कविता में शुरुआत की कुछ पंक्तियों को जोड़कर वंदे मातरम का संस्कृत अनुवाद लेकर और फिर अंत में उन्होंने वंदे मातरम के महत्व को बताने वाली पंक्तियां जोड़ी। मूल गीत में जो पंक्तियां या शब्द बांग्ला के हैं, केवल उन्हीं पंक्तियों को संस्कृत में बदला गया था। उदाहरण के लिए, के बोले माँ तुमी अबले, इसकी जगह कोह भिदंते मातर बले। उसी प्रकार बाहुते तुमी माँ शक्ति के स्थान पर भुजयो स्तबम मसी शक्ति चेतसी त्वमसी भक्ति ही सृजामिते प्रतिमूर्ति ही मंदिरे मंदिरे, ऐसी पंक्तियां आई हैं। ऋषि बंकिम चंद्र द्वारा लिखे गए वंदे मातरम गीत में अधिकांश शब्द रचना संस्कृत में ही है, इसलिए इस अनुवाद में सभी पंक्तियां संस्कृत भाषा में रूपांतरित हो गई हैं और इसीलिए इसे पूरी तरह से स्वतंत्र पहला अनुवाद नहीं माना जा सकता।
2: में ऋषि बंकिम चंद्र जी ने बंगाली मिश्रित संस्कृत में वंदे मातरम की रचना की, लेकिन उसमें निहित आशय के कारण मात्र बंगाल तक सीमित न रहकर वो काव्य पूरे देश का गीत बन गया। मूल गीत तो लोकप्रिय हुआ ही, परंतु अनेक भाषाओं के कवियों ने ये महसूस किया कि ये गीत उनकी अपनी प्रांतीय भाषा बोलने वाले सामान्य जनों तक पहुंचना चाहिए। अतएव उन कवियों ने अपनी अपनी भाषा में इसका अनुवाद भी किया।
0: गुजराती, तेलुगु और उर्दू जैसी भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में भी 9 से अधिक अनुवाद हुए। हर भाषा की अपनी विशेषता, अपना निरालापन होने पर भी बंकिम बाबू के मूल गीत की मधुरता बनाए रखने का प्रयास सभी ने किया।
3: आश्चर्य की बात यह है कि वंदे मातरम का पहला अनुवाद 1888 में यानी बंकिम चंद्र जी के जीवन काल में ही श्री अरविंद के दादा राज नारायण बसु ने अंग्रेजी में किया। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसी अनुवाद के कारण वंदे मातरम के भाव पर शंका जताई गई। अंग्रेजों ने

0: वंदे मातरम का संज्ञान इसी अंग्रेजी अनुवाद के कारण लिया। बाद में लगभग 17-18 साल बाद राजनारायण बसु के ही नाती क्रांतिकारी अरविंद घोष ने वंदे मातरम के दो अंग्रेजी अनुवाद किए।
1: उसके बाद 6 और अनुवाद प्रकाशित हुए। उनमें से एक अनुवाद बंगाल के विभाजन की पृष्ठभूमि में 11 दिसंबर 1905 के इंडियन मिरर के अंक में प्रकाशित हुआ। उस पर कवि का नाम नहीं था। एक और अंग्रेजी अनुवाद द स्टेट्समैन के 1905 के अंक में प्रकाशित हुआ और उस पर ट्रांसलेटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल काउंसिल इन अमेरिका ऐसा छपा था।
0: इन अंग्रेजी अनुवादों की एक विशेष बात ये है कि इनमें से एक अनुवाद ब्रिटिश अधिकारी W.H.L. लेफ ने किया था, जिसमें विंध्य, दुर्गा, लक्ष्मी और वाणी इन शुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग उल्लेखनीय है।
2: Motherland, I sing. Her splendid streams, her glorious trees, they zephyr from the far-off Vindhya Heights. Her fields of waving corn, the rapturous radiance of her moonlit nights, the trees and flowers that flame afar, the smiling days that sweetly vocal are, the happy blessed motherland, her will by 70 million arms upheld, her strength no man's scorn. Thou art my head, thou art my heart, my life and soul art thou, my song, my worship and my art. Before thy feet I bow, as Durga, scourge of all thy foes, as Lakshmi, bowered in flower that in the water grows, as Vani, wisdom and power, the source of all our might, our every temple doth thy form uphold, unequaled, tender, happy, pure, of splendid streams, of glorious trees, my motherland, I sing. The stainless charm that shall endure, and verdant banks and wholesome breeze, that with her praises sing.

0: सबसे अधिक अनुवाद अंग्रेजी में हुए। हिंदी साहित्यकारों पर भी वंदे मातरम का प्रभाव पड़ा। प्रसिद्ध हिंदी कवि मदनलाल वर्मा कांत और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत सुंदर अनुवाद किए हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी वंदे मातरम के कोटि कोटि कंठ वाले छंद का अनुवाद सुंदर हिंदी में करते हैं।
1: 30 कोटि लोगों की कलकल सुनी जहां पर जाती है, उसके दुगुन खड्ग धारा की द्युति विकास जहां पाती है, तिस पर भी तू अबला है, ये बात व्यथा उपजाती है। हे तारिणी, हे बहुबल धारिणी, रिपु तू काट गिराती है, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
2: उर्दू भाषा में भी वंदे मातरम के 3 अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। उनमें से पहला काजी अब्दुल गफ्फार द्वारा किया गया अनुवाद दैनिक पयाम के उर्दू अंक में 7 अक्टूबर 1937 को प्रकाशित हुआ। प्रसिद्ध उर्दू शायर सीमाब अकबराबादी तथा कवि भानु ने भी उर्दू में अनुवाद किए।

तमिल भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। विख्यात कवि सुब्रमण्यम भारती ने दक्षिण में वंदे मातरम शब्दों का प्रचार अपने काव्य और कार्य से किया। भारत रत्न MS सुब्बलक्ष्मी ने भारती द्वारा किए गए अनुवाद को अपने मधुर स्वरों से सजाया था।

संध्या दीक्षित के कन्नड़ अनुवाद में मूल वंदे मातरम की नाद मेहता बहुत सुंदर ढंग से प्रकट हुई है। तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म का अनुवाद करते हुए वे लिखती हैं, नी विद्ये नी ने धर्म, नम हृदय दी नी ने मर्म।